मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम फ्रिक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 15 तिथि व दिवस है शनिवार। श्रोताओं, 15 अगस्त का पुनीत पावन दिन पूरे देश के लिए असीम गौरव का दिन है, अपनी समृद्धि और खुशहाली पर जश्न मनाने का दिन है, एक संघर्ष के समाधान का लक्ष्य प्राप्ति के स्मरण का दिन है। ये वो दिन है जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए हमने बरसों इंतजार किया। लगभग 200 वर्षों से भी अधिक दर्द भरी पराधीनता की काली अंधेरी रात के बाद आजादी का सूर्योदय हुआ आज ही के दिन यानी 15 अगस्त सन 1947 को। तो श्रोताओं, इस पावन अवसर पर आप सभी को आकाशवाणी तवांग परिवार की ओर से

ढेर सारे शुभकामनाएं। जी हाँ, इसी शुभकामना के साथ आकाशवाणी के तवांग केंद्र से हमारा आज का विशेष प्रसारण अब आरंभ होता है। आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आइए हमारे आज के विशेष कार्यक्रमों से आपको अवगत करवा दें। अब से कुछ ही देर में आप सुनिएगा हिंदी भजन और सुबह के ठीक 7 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से दिए जाने वाले राष्ट्र के नाम संबोधन का सजीव प्रसारण। और सुबह 9 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित राजधानी ईटानगर में आयोजित होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू द्वारा आईजी पार्क ईटानगर से राज्य के नाम संबोधन का सजीव प्रसारण। श्रोताओं, हमारे विशेष कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ अब आपको जानकारी दे दूं, अब से लेकर हमारे विशेष प्रसारण के अंत तक कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे प्रसारण अधिकारी श्री थुतन जम्बा, नियंत्रण कक्ष में तकनीकी अभियंता श्री कमे यंगफो और शिखा दिक्का, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और अश्युत बर्मान के साथ मैं हूं आज की हिन्दी उद्घोषिका दर्जी ड्रमा।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय सुबह के 6:50 हुए हैं। आए श्रोताओं, अब दिन की शुरुआत करते हैं ढेर सारे सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुरेश वाडकर के आवाज में हिंदी भजन सुनते हुए।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वंदना में सुरेश वाडकर के आवाज में हिंदी भजन। इसके साथ ही कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय सुबह के 7 बजने को है। अब आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले के प्राचीर से दिए जाने वाले राष्ट्र के नाम संबोधन का सजीव प्रसारण। श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा।

0: आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी। देश

0: सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चलें।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
3: वंदे मातरम। लाल किले के इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की इस सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोक

0: लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यहां से
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो हैं वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर

0: स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था, वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारते यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह। सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिने हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कणकण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्या हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहाँ पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहाँ आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहाँ पर सामान्य जन है, एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग

0: अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं। दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहां बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहां बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहां दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहां लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित है।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र, मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों। और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन बिक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय

प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।

0: কমান্ডারকে নেতৃত্ব তুমি
1: প্রথমে সালামি
2: भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे

0: पास 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में प्रधानमंत्री के समक्ष थोड़ी नम्रता लेकिन अभिमान का अभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमारी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई हम है भारत के प्रहरी हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रकट करते हुए और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का उनके प्रति श्रद्धावनत होने का जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं लाल किले की प्राचीर पर जहां 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता

0: एकता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी। ध्वज फहराने में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं, राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
1: निश्चित रूप से और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यही हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी

0: कंठा में और उल्लास में। बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जैनेन्द्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। इस समय ध्वज

0: द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते
1: हैं। राष्ट्रीय ध्वज।

0: इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे ध्वनि सुनाई दे रही है वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये मी 17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटकेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: जी, और जैनेन्द्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये।
0: जी, और राष्ट्रीय सलामी कारत अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना कमांड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजे, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र के प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की

बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तरफ त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है।

नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। मेरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया।

देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है। और इसे, इस चीप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसी ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को

0: सुरक्षित करने में जुटा हुआ है
1: कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया, बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज

से 12 साल पहले हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल

हो रहा है। बारह वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया,
पेट्रोल

पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर के अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्यायतंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्यों को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार

करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे स्वीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा तो हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी

चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मंडवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल

आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत की क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत पर क्यों ना हो, कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर

भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक, पांच बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की पांच बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी एक दो फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर श्रीमोर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें काल आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज

करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ₹2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपने उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को

फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का तो भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच कर

के रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विश्राम रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का

अवधानों हमारी बेटियां आगे देखकर दिखाई दे। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस। मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आगे करता हूं। आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं। वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बजे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है।

कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों को कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं, अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही,

साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा

0: वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और इस समय
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश की युवाओं का देश है, और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश की प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हो, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूँ, मैं युवा हूँ, मैं भारत का प्राण हूँ।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का, नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं, हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर हर व्यक्ति आज हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। भारत

0: विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी हैं इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामयी मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
0: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं, और किसी भी गांव में

0: लाख से अधिक गांवों में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहां के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
1: जी बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्ति धरध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
2: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आज नई दिल्ली में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन का सजीव प्रसारण। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, समय सुबह के 9:15 हुए हैं।

0: सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित आज राजधानी ईटानगर में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू द्वारा दिए गए राज्य के नाम संदेश।
1: भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत अब इलाज की चिंता से आजादी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर

0: पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
0: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गतिशक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
0: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को

0: लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपए पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपए में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपए में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर

0: भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की है। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ते ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
0: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहेड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation...

0: Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara, aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards, including 13 posthumous for defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
0: He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold.
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100

0: गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: Ab energy ke bina bhi nayi duniya ko chalana mushkil hai aur isliye hame cheap ho AI हो डेटा सेंटर हो हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी हमारे यहाँ भी बातें होती थी लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए और आज स्थिति क्या है आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे हर किसी में चीप अनिवार्य है और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा conviction रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए दुनिया में बहुत कुछ मिलता है सस्ता मिलता है जल्दी मिल सकता है लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे हम समझते थे हम सुनते थे अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य मेरे साथियों बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu has said that the government is undertaking comprehensive steps to completely curb the use of unfair means in

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित भारत के 80वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को संबोधन, और उसके तुरंत बाद आपने सुना दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज, और अभी आपने सुना शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अभी सुनते हैं अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य को जनता के लिए संदेश।
1: माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश,
2: ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन

0: better connectivity to education, healthcare, sports, youth development, women empowerment, and employment opportunities, we are witnessing change across sectors. Much of this transformation has been possible because of the continued support and commitment of the Government of India under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I express my sincere gratitude to him and to the Government of India for standing firmly with Arunachal Pradesh. However, let me say this clearly, the progress of Arunachal Pradesh belongs to Team Arunachal. It belongs to all of us, our people, our youth, our mothers and sisters, our farmers, entrepreneurs, sportspersons, students, government employees and every citizen who contributes to the state in their own way. And today, I want to speak especially to the younger generations. You are not the future of Arunachal. You are already shaping its present. You are more connected, more informed and more ambitious than any generation before you. With that opportunity comes responsibility. Use social media to learn, create, connect and build. In this age of artificial intelligence, information can travel faster than truth. So pause, verify and think before you believe, create or share something online. Technology should empower us, not manipulate us. As a government, we recognize our responsibility towards our aspirations. We will continue to create opportunities for you to learn, innovate, compete, work and build a future here in Arunachal. Over the years, every citizen has supported and cooperated with government in our shared journey of reform, perform and transform. I sincerely thank you for all that trust. Let us continue this journey together. And above all, let us protect the peace of our state. Peace is not merely the absence of conflict. Peace is the foundation on which development is built. On this Independence Day, let us honor the sacrifice those who gave us freedom by using that freedom with responsibility to build a stronger, more peaceful, prosperous and united Arunachal Pradesh. Jai Hind, Jai Arunachal.
1: हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अरुणाचल प्रदेश के हर नागरिक को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान और गर्व के साथ याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन और सब कुछ न्योछावर कर दिया। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं। साथ ही हमें उन बहुत से गुमनाम वीरों को भी याद करना चाहिए जिनकी कहानियां शायद हमारे इतिहास की किताबों तक नहीं पहुंच पाई। हमारी अलग अलग संस्कृतियां और परंपराएं हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारे अलग अलग इलाकों और समुदायों की जरूरतों और उम्मीदें अलग हो सकती हैं। इन सभी उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं है, फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद अरुणाचल प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार में सुधार से लेकर बेहतर सड़क और दूसरी सुविधाओं तक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, युवाओं के विकास, महिलाओं को आगे बढ़ाने और रोजगार के अवसरों के क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इस विकास में भारत सरकार का लगातार मिल रहा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश का लगातार साथ दिया है। इसके लिए मैं उनका और भारत सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश की तरक्की टीम अरुणाचल की तरक्की है। इसमें हम सभी का योगदान है। हमारे लोग, हमारे युवा, हमारी माताएं और बहनें, हमारे किसान, व्यापारी, एंटरप्रेन्योर, खिलाड़ी, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी और हर नागरिक अपने अपने तरीके से राज्य को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। आज मैं खास तौर पर हमारे युवाओं से कुछ कहना चाहता हूँ। आप हमारे राज्य का सिर्फ भविष्य नहीं है, आप राज्य के वर्तमान को भी आकार दे रहे हैं। आप पहले की किसी भी पीढ़ी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं और आपके सपने भी बड़े हैं। इस अवसर के साथ आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखने, कुछ नया बनाने, लोगों से जुड़ने और आगे बढ़ने के लिए करें। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: के कारण जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन किसी भी बात पर विश्वास करने, कुछ बनाने या आगे भेजने से पहले रुकें, जानकारी की जांच करें और सोचें। आज तकनीक हमें सशक्त बना रही है, लेकिन तकनीक हमें नियंत्रित नहीं करनी चाहिए। एक सरकार के रूप में हम आपकी उम्मीदों और जरूरतों को समझते हैं। हम आगे भी ऐसे ही मौके और सुविधाएं देने की कोशिश करते रहेंगे, जिनसे आप सीख सकें, कुछ नया कर सकें, काम कर सकें और अपने अरुणाचल में ही अपना बेहतर भविष्य बना सकें। पिछले कुछ वर्षों में हर नागरिक ने सरकार के साथ मिलकर सुधार और बदलाव की इस यात्रा में सहयोग दिया है। आपके भरोसे और सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलकर ये यात्रा आगे भी जारी रखें। और सबसे जरूरी बात, आइए हम अपने राज्य की शांति की रक्षा करें। शांति का मतलब सिर्फ झगड़े या टकराव का न होना नहीं है। शांति वो आधार है जिस पर विकास की नींव रखी जाती है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम उन लोगों के बलिदान का सम्मान करें जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और उस आजादी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत, शांतिपूर्ण, खुशहाल और यूनाइटेड अरुणाचल प्रदेश का निर्माण करें। जय हिंद, जय अरुणाचल।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू द्वारा दिए गए राज्य के नाम संदेश। इसी के साथ ही हमारे आज के विशेष प्रसारण समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। हम आपके सेवा में पुनः उपस्थित होंगे दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए प्रसारण अधिकारी श्री थुतन जम्बा, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामे यंगफो, श्री लाम सिंह और शिखा दिक्का, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और अश्युत वर्मा तथा अन्य सहकर्मियों के साथ आज की हिंदी उद्घोषिका दर्जी वर्मा को दीजिए इजाजत। आप सभी को पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।

मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम फ्रिक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज 2026 अगस्त महीने की दिनांक 15 और शुभ दिन है शनिवार। श्रोतम आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोतों तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्री तुपतन ताशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कुमारी शेखा देखा, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास, श्री न्यूटन बोरा और श्री अच्युत बर्मन, मोनपा में उद्घोषक श्री तुपतन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यीशु।

0: every possible effort to take the country to new heights. Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold, and mobile phone manufacturing increased by 33-fold. He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions 100 times.
1: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को

0: जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2,500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
3: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गई जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
4: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज

0: फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
2: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
3: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रुवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय

0: वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने एक विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं में आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय दोपहर के 2:30 है और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आइए सुनते हैं श्री लक्ष्मी वंदना मंदर उदास के स्वर में। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।
2: लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा संपत्ति प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का सस्वर पाठ तथा श्री सूक्त की ऋचाओं से घृत होम करने का विधान वेद आदि शास्त्रों में वर्णित है। विशेष रूप से आधुनिक युग में वेदादि मर्यादा से हीन मनुष्य श्रीहीन, कांतिहीन और चिंतित तथा अशांत दिखाई देते हैं। उनके कल्याण के लिए श्री सूक्त पूर्वक होम विधान अत्यंत लाभकारी है। प्रातःकाल खिले कमल में गुणों का आश्रय लेने वाली लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। प्रातः प्रबुद्ध कमलम आश्रयेत श्री गुणाश्रया। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय स्नानादि से निवृत्त होकर श्री सूत का सस्वर पाठ सहित होम करता है, उसके पास संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य से युक्त लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। यही श्रीदेवी मनुष्यों को चिंता और शोक भरे भवसागर से पार उतार देती है। तरति शोकम आत्मविद। श्री सूक्त उपासना से मनुष्य सांसारिक वैभव तो प्राप्त करता ही है, उसको आध्यात्मिक संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। वह आत्मविद आत्म तत्व को सहज ही जान लेता है। जो व्यक्ति 21 बार श्री सूक्त के 16 मंत्रों से श्री होम करता है, वह सांसारिक ऐश्वर्यों के साथ साथ अष्ट सिद्धि और नव निधियों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र को सस्वर पढ़ने सुनने मात्र से ही व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों प्रकार की शांति प्राप्त होती है। जो मंत्र पाठ नहीं कर सकते, वे मंत्र सुनकर स्वाहा कहते हुए हवन करें। मंगलवार से हवन पूर्वक श्री सूक्त का जप अत्यंत लाभकारी होता है। 72 दिनों में 1,25,000 विधि पूर्वक जाप करने से श्री सूक्त सिद्ध होता है। सिद्ध होकर ही मंत्र व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। ओम शांति शांति।

लक्ष्मी गायत्री गायत्री मंत्र के समान ही महामंत्र है। गायत्री परात्पर ब्रह्म के ध्यान से सिद्ध होती है, उससे सांसारिक विभूतियों के कारक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। किंतु लक्ष्मी तो प्रकट सृष्टि का साक्षात स्वरूप है। यदि संसार के ऐश्वर्य धन धान्य के अभावों के कष्टों से संघर्ष करता व्यक्ति लक्ष्मी गायत्री का जाप करता है तो वो अभावों के समुद्र को बिना प्रयास ही पार कर जाता है। लक्ष्मी गायत्री से व्यक्ति जीवन की सुविधाओं को भोग कर प्रभु की कृपा से सुखद शांति प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री सूक्त को होम पूर्वक पूर्ण करके लक्ष्मी गायत्री के जप की 11 मालाएं फेरने से मनुष्य के दुख दारिद्र्य और अभाव का विनाश होता है और परम शांति।

ओम प्रभु शांति एक महात्मा का अनुभूत मंत्र है। इसका जाप करने से अशांति दूर होती है और विभिन्न क्षेत्रों में अनायास ही शांति प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र से हवन करके जाप करने से तत्काल मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यदि 5 मिनट भी कोई ओम प्रभु शांति मंत्र का जप कर लेता है तो उसके 23 घंटे 55 मिनट प्रभु स्वयं संभाल लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।

Ešte to, aby apne suna Mandar Udas ki swar mein Shri Lakshmi Vandana ke antargat Chand Hindi Bhakti Geet Inhi Bhakti Geeton ke saath hi Dainik Karyakram Vandana bhi par samapt hota hai. Medium VP meter band par aapki seva mein yah Akashvani ka Tavang kendra hai. Shroton samay dopahar ke theek 3 baje hain. लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत. इसके अंतर्गत आयानत लेते हैं बेंग्य हेमंता और ताना तारम तारा के सुरों में चंद नेशी आधुनिक नगमे. तो आयानत लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत.

0: Ich würde wir haben ja nicht leer. Bengia Hemanta or Dana Taram Tara ke Yugal Surumi Chand Nishi Adunik Nakmi. Inni Nakmo ke Sati Alag Alag Pranto ki Gito ka Karikam Pradesh Sangeet Abhi par Samapt Hua. Aapke Seva mein Ye Akashvani ka Tawang Kendra hai. Shrota samay dopahar ke 3:30 mein hai aur ab prastut hai Karikam Meri Baat. कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत आइए सुनते हैं पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वीं कक्षा के छात्र मिस पेमा चेकी से खेल और क्रीड़ा विषय पर दिए गए चंद वार्ता.
1: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है. मैं हूं कुमारी पेमा छेकी, पीएम श्री जेएनवी तवंग में 11वीं विज्ञान की छात्रा हूं. आज का कार्यक्रम में मेरी वार्ता का विषय है खेल और क्रीड़ा के महत्व. आज के समय में जब हमारा अधिकतर समय पढ़ाई, मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बीतता है, ऐसे में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है. सबसे पहले खेल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है. नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय रहता है. इससे हमारी सहन शक्ति, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा हम कई बीमारियों से दूर रहते हैं. दूसरे खेल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं. खेल खेलने से तनाव, चिंता और थकान कम होती है. इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है और संघर्ष शक्ति तथा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है. जैसे कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है. खेल अनुशासन और चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खेल हमें नियमों का पालन करना, समय का महत्व समझाना और ईमानदारी से प्रयास करना सिखाते हैं. जीत हमें आत्मविश्वास देती है और हार हमें धैर्य तथा संघर्ष करना सिखाते हैं. टीम खेलों के माध्यम से हम सहयोग, एकता और नेतृत्व के गुण सीखते हैं. क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल हमें टीम भावना सिखाते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग होते हैं. खेल सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खेल मैदान में पसीना बहाकर तो देखो, मुश्किल में जीत का होकर हुनर पाकर तो देखो. खेल मैदान में पसीना बहाकर तो देखो, मुश्किल में जीत का हुनर पाकर तो देखो. इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देती हूँ. धन्यवाद.
0: श्रोताओं भी आपने सुना पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा के छात्र मिस पेमा चेकी से खेल और क्रीड़ा विषय पर दिए गए जन संदेश. श्रोता सी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अभी पर समाप्त हुआ. आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. श्रोता समय दोपहर के 3:33 हुए हैं और अब प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत. नारी संगीत कार्यक्रम को आरंभ करते हुए पहला नगमा आनंद लेते हैं इंग्लिश फिंग्लिश फिल्म से अमित द्विवेदी की आवाज में. इस गीत के गीतकार है सावन किरकिरे तथा संगीतकार है अमित द्विवेदी.

शोधों भी आपने सुना रहा हफ्ता फिल्म से अतीफ असलम की आवाज़ में गीत इरशाद कमील के थे दादा संगीत जैम एड का। शोजों इसी नगमे के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी पर समाप्त हुआ। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का थवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए श्रोता और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत आयानत लेते हैं चंद देशभक्ति गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं माँ तुझे सलाम फिल्म से ए आर रहमान की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हरियाणा लेते हैं फ्रॉम बुस्टी प्राइड ऑफ इंडिया से अरिजीत सिंह की आवाज में। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने तथा संगीत से संवारा है आरको ने।

श्रोता भी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में सरपरोशी की तमन्ना या देशभक्ति नगमा। आइए फाइनल लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गीत के बोल है आकाश की उस पार भी आकाश।

कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आनंद लेते हैं फना फम से माँ लक्ष्मी अय्यर की आवाज में। परशन जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोतो कार्यक्रम का अंतिम नगमा ये सुनते हैं वीर जरा फिल्म से लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाजों में।

ईश्वर तो अभी आपने सुना लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाज़ों में फिल्म वीर जरा से या देशभक्ति गीत। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजर अभी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय संध्या के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में डीजे पेश है पंडित हरिप्रसाद चौरासिया से राग मतमेत सारंग पर बांसुरी वादन तथा तबले पर साथ दे रहे हैं शफीर खान। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन तथा तबला पर साथ दे रहे थे शफीर खान। श्रोता इसी के साथ ही शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त हुआ। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित आपसे कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्रचार से किया ध्वजारोहण। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा। इधर अरुणाचल प्रदेश में भी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस गर्व और देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को दी शुभकामनाएं। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने

0: एक विकेट के नुकसान पर 234 रन बना लिए हैं। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर से ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंजमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा है कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा है कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत की दुनिया की तब सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा है कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा है कि जिन अपठित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया है, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की एक विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी।
3: अंतर सेवा पुलिस बंद करो।
2: इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2,500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड ने आज लोकभवन ईटानगर में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस गर्व और देशभक्ति के उत्साह के साथ आयोजित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने लोकभवन में संबद्ध भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के 33वीं बटालियन की एको कंपनी द्वारा प्रस्तुत गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने लोगों से राष्ट्रीय नायकों और अरुणाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत का सम्मान करने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा है कि इन वीरों की देशभक्ति आज भी लोकतंत्र, न्याय, समानता, एकता और राष्ट्र सेवा के मूल्यों के लिए प्रेरणा देती है। वर्ष के महत्व को रेखांकित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि देश स्वतंत्रता के 8 दशक पूरे होने का उत्सव मना रही है और साथ ही वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। उन्होंने

0: गायक इस अमर गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पीढ़ियों को प्रेरित किया है और आज भी ये देशभक्ति, राष्ट्र गौरव तथा सामूहिक नियति का प्रतीक बना हुआ है। इस अवसर पर आकाशवाणी ईटानगर की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव गैर अहतर को जनसंचार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान तथा महत्वपूर्ण राज्य समारोह के कुशल और समर्पित संचालन एवं एंकरिंग में उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए विशेष प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आज हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञता और गर्व के साथ याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम उन ज्ञात वीरों के नमन करते हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज है, लेकिन उन्हें अनेक गुमनाम नायकों की भी याद करना चाहिए जिनकी कहानियां शायद इतिहास की किताबों के पन्नों में अब तक दर्ज नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विविधताओं और चुनौतियों के बावजूद अरुणाचल प्रदेश उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन सुधार और बेहतर कनेक्टिविटी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल, युवा विकास, महिला एवं सशक्तिकरण को रोजगार के अवसरों तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2026 के राज्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की। इस वर्ष अरुणाचल प्रदेश के लिए उत्कृष्ट सेवाओं और योगदान के लिए कुल 23 व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया गया है। इनमें 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 16 प्रशस्ति पत्र शामिल है। मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये सम्मान उत्कृष्ट समर्पण, जनसेवा और ऐसे योगदानों को मान्यता देते हैं जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों और राज्य के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के डिप्टी कमांडेंट निकोम रिबा को स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए चुना गया है। पुलिस सेवा श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश से इस सम्मान के लिए चुने जाने वाले वे एकमात्र अधिकारी है। मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस एक राष्ट्रीय सेवा पदक है जो पुलिस, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के ऐसे कर्मियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी सूझबूझ और कर्तव्य के प्रति समर्पण का उल्लेखनीय सेवा दी है। पासीघाट स्थित सिगार मिलिट्री स्टेशन के स्पेयरहेड गनर्स द्वारा असम के धेमाजी जिले के जोनाई साइंस कॉलेज में एक यूथ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जॉइंट इंडियन आर्मी विषय पर प्रेरणादायक व्याख्यान भी प्रस्तुत की गई। इसमें कक्षा 5वीं से लेकर डिग्री के प्रथम वर्ष तक के 120 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अपर सुबनसिरी जिले के नाचो में हुए भूस्खलन हादसे के बाद घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अपर सुबनसिरी द्वारा आज दोपहर 3:30 पर दी गई जानकारी के अनुसार भूस्खलन स्थल से 3 मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें तातू बाकी, ताजी राय और बाबुल अली शामिल है। वही एक और मृतक मार्का रोश बासुमतारे का शव अभी बरामद किया जाना बाकी है। घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान जारी है। हादसे में घायल सोनार बासुमतारे को दापोरिजा अस्पताल में भेज दिया गया है। गाली में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 62 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे 7.7 तीव्रता के भूकंप से कम 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से इमारतें ढह गई, भूस्खलन हुआ और चारों ओर दहशत फैल गई। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए और 2 लापता है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शुभशाची भट्टाचार्य। The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, PM Modi described the chanting of Bande Mataram at the Red Fort as a historic moment. He noted that the nation is moving forward with great zeal and new resolutions. He said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway

Jebo, Yeah,

Yabba,

Chapa

Chebale, Jesse,

Ga

Bangwa

Kebab,

मीडियम में पिलहर चेचिले ने खेली थी मीटर जेथी ने खेली थी इसका लंजे नाशल उस लेरिम सो लुंगचिंग का तावंग शुद्धमुर लंजे थामा नब्दिक चुजे लेंगटिंग कर्म खेली चिवानी देशी चिलो निदों खेली क्रोलोक चिंदी जेबाक तारिक चिलेंगे बॉय जेलो निदों क्या ने क्या ने चिक्सुम रबने मेटल लोक बॉय दावे तुम बाक से सुम शेज़े पेंपे यंबर लेंगने दा देशी ने चु जेथिन शो बनं तुब्दन देशी सी शुजु सनां सा Lenin and the Tawang Sanyaka, Nisusanasa Desh Jagaranzan Jagar Jagap Ranzan Ranzan Tapiax Tomrit Kelly Gayuk Dijin Jagar Gyanyanga Jisung Shudumoto Desh Tawang District Halandin Nene Tawang Peret Ground Ka Jagaranzan Dijin Jisung Shudumbur देश उच जगर जगप रावण जन थप्यक्स तम्रित खेबल गयुक दिजन कप का देश नवलिंग नथा चुजे दुगुनिंग कर्मची चे कुरुन चोव तावांग सने कक चिधि कुजब नम्जे चिरिंग सी जगर केदर शुर्या नमुनिंग शुजे तावांग सने कक मामी 38 बटालियन SSP, District Police, NCC, Labda Buzha, Banasi, Perit, Nene, Makzeya, Nagumbar. Eji Shuche, Kudun Tawang Sanekak, Chidi, Kujab, Namjit Sirin Si, Mimashal,

वंदे मातरम, आजादी के अमृत भाव से सराबोर सुबह, हाथों में तिरंगा, दिलों में देशभक्ति और चेहरे पर गर्व की चमक। देश आज मना रहा है स्वतंत्रता दिवस। श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 15 अगस्त सन 1947 को देश लगभग 200 सालों बाद अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुआ था और आज देश अपना 80वें स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस पावन अवसर पर पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस सीमावर्ती जिला तवांग में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर देश के स्वतंत्रता दिवस को हर गली, हर मोहल्ले और सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में पूरे राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया। तवांग जिला मुख्यालय में आज दिन की शुरुआत स्कूली बच्चों के प्रभात फेरियों के साथ हुए। इसके बाद सभी संस्थाओं में प्रातः 8 बजे राष्ट्र तिरंगा को फहराया गया और इसी क्रम में आकाशवाणी तवांग के परिसर में कार्यक्रम प्रमुख श्री टाशीधुर जी और आकाशवाणी तवांग के प्रेषण केंद्र में श्री अमल दास ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद सभी लोग सामूहिक रूप से इस पावन अवसर पर शामिल होने के लिए जनरल परेड ग्राउंड तवांग में पहुंचे। यहां जनरल परेड ग्राउंड तवांग में आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री नामगे छिरिंग का लगभग 8:55 पर पधरना हुआ और सुबह के

ठीक 9:01 पर आज का मुख्य अतिथि श्री नमगित सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय ने स्वतंत्रता दिवस के परेड समारोह में भाग ले रहे परेड कंटिजेंट्स का निरीक्षण किया। आज के इस परेड समारोह में कुल 11 परेड कंटिजेंट्स ने भाग लिया, जिसमें 38 बटालियन एसएसपी तवंग, डिस्ट्रिक्ट पुलिस तवंग, आर्मी बैंड प्लाटून, एनसीसी स्काउट गाइड्स और तवंग जिला मुख्यालय के लगभग हर स्कूल के बच्चों ने परेड समारोह में भाग लेते हुए राष्ट्रीय तिरंगा को सलामी दी।

0: स्वतंत्रता दिवस के परेड प्रदर्शन के बाद देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित जन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि महोदय ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए उन वीर जवानों को याद किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
1: देश के 80th इंडिपेंडेंस डे की इस खास अवसर पर मैं सभी तवंग वासियों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमें उन वीर जवानों को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम आजाद देश में सुख और शांति से रह रहे हैं। आज हम सभी उन वीरों वीर शहीदों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। साथ ही देश की सीमा पर दिन रात हमारे रक्षा करने वाले सभी वीर जवानों को भी सलाम करते हैं। तवांग जैसे सीमावर्ती क्षेत्र के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे धरती हमेशा से देशभक्ति वीरता और देश के लिए त्याग की मिसाल रही है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी मिलकर देश की एकता शांति और विकास के लिए अपने योगदान देने का संकल्प लें। दोस्तों, आजादी सिर्फ हमारे इतिहास का एक हिस्सा नहीं है बल्कि यह हमें हर दिन अपने देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी याद दिलाती है। आज के इस खास दिन में उन सभी नेताओं बुजुर्गों और सोशल वर्कर्स को याद करना और धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने अच्छे काम और योगदान से तवांग को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की है। मैं उन सभी विधायकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझसे पहले तवांग विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मेहनत की और भविष्य को ध्यान में रखकर कई अच्छा काम किए हैं।
0: मेजर रालंगना बोब खाटिंग और उनके साथ तवांग आए भारतीय सेना के सभी जवानों और अधिकारियों को धन्यवाद और नमन करते हुए कहा।
1: मैं खास तौर पर मेजर रिलिक्नो बोब खाटिंग जी और उनके साथ तवांग आए भारतीय सेना के सभी जवानों और अधिकारियों को धन्यवाद और नमन करता हूं। उन्होंने तवांग को भारत का हिस्सा बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं उन सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी नमन करता हूं जिन्होंने कठिन समय के बावजूद तवांग में प्रशासन को सही रूप से चलाया है।
0: सन 1962 की भारत चीन के युद्ध के दिनों को याद करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा।
1: सन 1962 के भारत चीन युद्ध में तवांग को बहुत नुकसान हुआ। हमारे कई घर मठ और पुराने हेरिटेज भी प्रभावित हुए। कई परिवारों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

0: लेकिन भारत सरकार की कोशिशों और तवांग के लोगों की हिम्मत और मेहनत से आज तवांग एक सुंदर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्थल बन गया है। मैं उन सभी बुजुर्गों को सलाम करता हूं जिन्होंने कठिन समय में भी तवांग को नहीं छोड़ा और अपने जवान भाइयों का साथ दिया। इसी वजह से आज तवांग में भारतीय सेना और आम लोगों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता और म्यूचुअल ट्रस्ट है।
1: इसके बाद अपनी मातृभाषा और बोली की महत्व विषय पर बात करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा,
0: मैं अपने सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे यह प्यार भाईचारा और विश्वास हमेशा बना रहे। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जीवन में कितने भी सफल हो लेकिन अपने जड़ और अपने पहचान को कभी ना भूले। हमारे पहचान हमारे संस्कृति परंपरा और अपनी भाषा से अंग्रेजी और हिंदी जैसे दूसरी भाषा सीखना अच्छी बात है लेकिन अपनी मातृभाषा और अपनी बोली को जानना और बोलना भी बहुत जरूरी है। इसमें हम माता पिता की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे दादा दादी और पूर्वजों ने हमें एक सुंदर तवांग दिया है।
1: इसके बाद तवांग जिला प्रशासन द्वारा तवांग को प्लास्टिक मुक्त बनाने के कार्य को समर्थन करते हुए लोगों को अपील की कि तवांग को साफ बनाने में योगदान दे।
0: तवांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तवांग को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए जो काम शुरू किया है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस काम में अपना सहयोग दे और तवांग को साफ और प्लास्टिक फ्री रखने में मदद करे। वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन, क्लीन तवांग ट्रस्ट फोर्स और कई एनजीओ ने इस काम में जो योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं, इसके लिए मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं।
1: और विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा,
0: हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए केवी के तवांग किसानों को मॉडर्न तरीके से खेती करने की जानकारी, खेती की टूल्स का ट्रेनिंग और अलग अलग प्रकार के बीज उपलब्ध करा रहे हैं। आत्मनिर्भर पशुपालन योजना के तहत हमारे किसानों को 7 डेयरी यूनिट, 8 याक और 1 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिट की मदद दी है। हमारे याक पालकों को अच्छी इनकम और सही बाजार मिले इसके लिए इस साल 50 याक पालकों को 1,00,000 रुपये की मदद दी गई है। हाल ही में तवांग के 35 किसानों को हाई जेनेटिक मेरिट जर्सी काउ भी दी गई है, जिसके अलावा 6 किसानों को मिथुन बुल भी दी गई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने जंग से सेला टनल तक 33 केवी एसटी लाइन का काम पूरा कर लिया है। अब तवांग की ओर भी बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। पूरे नेहरू मार्केट और न्यू मार्केट के आधे से ज्यादा इलाके में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा हो चुका है, जिसके साथ ही न्यू बाजार, एसबी कॉलोनी, एयर कॉलोनी, तपोवन, रिगिलिंग और क्राफ्ट सेंटर कॉलोनी में हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाने का काम भी पूरा हो गया है। आरडब्ल्यूडी विभाग विभिन्न गांवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आरआईडीएफ, एमएसटीपी, साडा बी, एसआईडीएफ, एंटी टूरिज्म और आरई जैसे योजनाओं के अंतर्गत कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम कर रही है। दोस्तों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अब पहले से बेहतर हो चुका है। अप्रैल 2025 से अब तक 48,305 मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें 56 बड़ी और 62 छोटी सर्जरीज भी शामिल है। इसके लिए मैं पूरी तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टीम को धन्यवाद देता हूं। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक तवांग की 87 ग्राम

0: ग्राम पंचायत में से 32 को टीबी मुक्त ट्रेनिंग किया गया है। अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने जिले के कई गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए हैं। इसी क्रम में जमघर गांव में भी 26 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन अफेयर्स हमारे तवांग शहर को साफ सुथरा रखने के साथ साथ बुद्धा पार्क के पास 400 कम्युनिटी हॉल और गेस्ट हाउस का निर्माण भी कर रहे हैं, जिसका करीब 70% काम पूरा हो चुका है। शहर के कचरे का सही तरीका से मैनेजमेंट हो, इसके लिए मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी भी बनकर तैयार है और अब धीरे धीरे काम शुरू हो गया है। तवांग वासियों से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग पिकनिक जाकर लौटते हुए पहाड़ियों, नदियों, झील और जंगल में कचरे को ना फेंकें, क्योंकि आप हमारे पास MRF यानी कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, आप अपने सेग्रीगेटेड कचरे को वहीं पे पहुंचाएं। दोस्तों, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जल्द ही हमारे तवांग शहर में आर्चरी स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे हमारे युवा दूसरे खेलों के साथ साथ आर्चरी का भी ट्रेनिंग ले सकेंगे और कॉम्पिटिशन में आगे भाग ले सकेंगे। दोस्तों, समय बहुत तेजी से बदल रहा है, ऐसे समय में हमें अपने खूबसूरत मनपा संस्कृति को भी साथ लेकर आगे बढ़ना है। बुजुर्गों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, आपस में भाईचारा यानी कि ब्रदरहुड रखना और हम्बल रहना हमारे मनपा समाज के पहचान है। आपने इस पहचान को हमेशा बनाए रखना है और आने वाला पीढ़ियों को भी ऐसे ही आगे बढ़ाना है। तवांग सिर्फ अपने खूबसूरत प्रकृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रिलीजियस हेरिटेज, संस्कृति, पर्यटन और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी समृद्ध मनपा संस्कृति, परंपरा, भाषा और एनवायरनमेंट को बचाते हुए आधुनिक विकास के साथ आगे बढ़ना है। मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, मोबाइल से ज्यादा समय किताबों में दे, नशे से दूर रहे, बुजुर्गों का सम्मान करें और अपने सपनों को देश के सपनों से जोड़ें। आज इस पवन अवसर पर हम सभी मिलकर यह संकल्प ले कि फ्रीडम फाइटर्स के सपनों को भारत बनाने में मैं अपना योगदान देंगे। हम सब मिलकर तवांग को विकास, शांति, साफ सुथरा, शिक्षा, पर्यटन और कल्चरल प्रिजर्वेशन का एक आदर्श बनाएंगे। इसी आशा, विश्वास और संकल्प के साथ आप सभी का स्वतंत्र दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
1: इसके बाद तवांग जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करते हुए जिन्होंने उपलब्धि प्राप्त की, उन्हें प्रशासित पत्र से सम्मानित किया गया। और युसुम गांव के नए गांव बुरा को नियुक्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर तीनों बाजार यानी ओल्ड बाजार, न्यू बाजार और नेहरू मार्केट के बाजार सेक्रेटरीज को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया। तवांग क्षेत्र के सभी गांव बुढ़ाओं को माननीय विधायक की ओर से सम्मानित किया गया। माननीय विधायक श्री नामगीत सिंह के पहल से 13 लोगों को पहली बार तवांग गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय और अन्य सम्मानित अतिथिगण ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल्स का उद्घाटन किया। इस दौरान मैदान में खेलकूद का आयोजन भी किया गया। इसके बाद विभिन्न स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें सबसे पहले गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ककलिंग के बच्चों द्वारा पेट्रियोटिक सॉन्ग

गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बोम्बा के विद्यार्थियों द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर नुक्कड़ नाटक, इलाइट इंग्लिश स्कूल के बच्चों द्वारा पेट्रियोटिक डांस,

0: किड्जी स्कूल तवांग के बच्चों द्वारा पेट्रियोटिक डांस, बेबी केयर इंग्लिश स्कूल के बच्चों द्वारा पेट्रियोटिक डांस, केजीबीवी कंगतेंग के विद्यार्थियों द्वारा पेट्रियोटिक डांस। इसके बाद एनजीओ बीइंग अरुणाचली द्वारा मैटरनल और इम्यूनाइजेशन पर नुक्कड़ नाटक, मोनपा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के कलाकारों द्वारा ब्रोकपा नुरजंग पर नृत्य, मंजूश्री विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा पेट्रियोटिक डांस, माउंट किशिला इंग्लिश स्कूल तवांग के बच्चों द्वारा मोनपा डांस, महाबोधि स्कूल के बच्चों द्वारा पेट्रियोटिक डांस, अरुणाचल पब्लिक स्कूल तवांग के बच्चों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ नाटक, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल शियो के बच्चों द्वारा पेट्रियोटिक सॉन्ग, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ख्रमेतिंग के विद्यार्थियों द्वारा मोनपा डांस, गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल तवांग के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति नृत्य, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति नृत्य और पीएम श्री स्कूल जेएनवी तवांग के बच्चों द्वारा ड्रग एब्यूज पर नुक्कड़ नाटक और अंत में भारतीय सेना द्वारा बैंड डिस्प्ले और इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रकार आज 80वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया गया और दोपहर 3 बजे से ग्यवाछायंग ग्याछो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में मेरग लामा लोड्रे ग्याछो इंडिपेंडेंस कप का फाइनल मैच आर्यादुंग एफसी और दकपा पंगचिन एफसी के बीच खेला गया। इस रेडियो रिपोर्ट का रिकॉर्डिंग श्री तेंजिन दोर्जी ने, लेख वाचिका एवं प्रस्तुतकर्ता दोर्जी ड्रमा।
1: संजना सिद्धता देश तवांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तवांग हटना।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:10 क्षमा करें, समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:20 पर सुनिएगा दैनिक छेदन लड़ी में तवंग मठ के गेंथोपतन सिरिंग और अन्य 10 भिक्षु छात्रों से गुंचक सुम्पा लामा चेपा तुंगशा चिशा दक्सो लुगेमा और टाशी। शाम 7:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुनेगा जिला अस्पताल तवांग के स्त्री रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर तेंजन कुंगा से प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन और प्रसव उत्तर में देखभाल महत्व पर एक भेंटवार्ता। उनसे भेंट करता होंगे सिटिम यांगचिन। आज शाम 7:30 पर सुनेगा दोनों गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज। इसमें आप सुन सकेंगे फिल्म तुमसे अच्छा कोने से दुन, उसके बाद गीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर। तत्पश्चात 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर सुनेगा कार्यक्रम कौमते रानी में एक देशभक्ति की फिल्म।

उपकार से महेंद्र कपूर की आवाज में आज रात 8 बजे सुनेगा 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर विशेष संयुक्त रेडियो रिपोर्ट, जिन्हें हम आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे News@9। रात्रि 9:15 पर सुनेगा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक बार फिर जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थे आज की शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं, अब हम आपको कल यानी 16 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दूं। रोजाना की तरह हमारा कल का सभा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना में अन्य समतन वंगमोहर साथियों से बोध भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत संगजा मार्फियो और साथियों की आवाजों में बुगुन नगमे। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात में पीएम श्री जेएनवी तवांग की 11वीं कक्षा की मिस कर्मा डेमा से संतुलित आहार का लाभ विषय पर जन संदेश। कल दोपहर 3:33 पर सुनेगा कार्यक्रम महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे सिंगम फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में, राबता फिल्म से आतिफ असलम के स्वर में, राबता फिल्म से आतिफ असलम की आवाज में, गुड फाइव फिल्म से अमित द्विवेदी की आवाज में, रॉय फिल्म से मीटफ्रो संजान और कनिका कपूर के सुरों में, ओम शांति ओम फिल्म से के स्वर में और आरक्षण फिल्म से मोहित चौहान, श्रेया घोषाल और न्यूमन की आवाजों में चंद नगमे। कल संध्या 4 बजे सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम युवावाणी। 4:30 पर सुनेगा शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित कल शाम 4:45 पर सुनेगा हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5 बजे सुनेगा रोजाना की तरह मोनपा कार्यक्रम के तहत नमदर लेरिम। कल शाम 5:35 पर सुनेगा रिक्शुंग लेरिम। 6 बजे लेरिम से 6:10 पर कार्यक्रम जिरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनेगा अमलोपसंग वंगमो और साथियों से गुंचक सुम्पा, गंदन लगेमा, योन्तन शिगिरमा, क्यावे शब्दन, संशय मनलम, तुंगवा शक्वा और सिमे योन्तन। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कल शाम 7 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:10 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर सुनेगा कवाली गीतों का कार्यक्रम महफिले कवाली। इसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे नुसरत फतेह अली खान से चंद कवाली। कल शाम 7:25 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर, तत्पश्चात 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो से

विजय प्रकाश की आवाज में। कल रात 8 बजे सुनेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। कल रात 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम जरोखा भी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

Yeah,

0: राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। LAHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ मोहम्मद जाफिर अखोन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो

ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर को अनोखे और प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए एक वैश्विक रिले श्रृंखला सूर्यपद तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस अनूठी पहल के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रध्वज उगते सूरज की दिशा का अनुसरण करते हुए दुनिया भर का चक्कर लगा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, मिस्र, लातविया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर में मौजूद भारतीय दूतावासों ने देश के गौरव और एकता के इस उत्सव के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया। लेख में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में अमृतकाल के दौरान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होने का आह्वान किया गया है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने विल्स को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The resolve to build a Viksit Bharat by 2047. In a social media post, Mr. Modi noted, the article calls upon people to dedicate themselves to building a Viksit Bharat by 2047 during this Amrit Kal and work together for the progress and prosperity of the nation. In Indonesia, 38 people have died after a 7.7 magnitude earthquake struck off the coast of Flores today. The powerful quake was followed by dozens of aftershocks as rescue teams continued efforts to reach the worst hit areas. In hockey, India defeated Wales 3-1 in a Group D match of the AFIH Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. For India, Captain Harmanpreet Singh scored 2 goals while Sanjay Rana scored 1. In men's cricket, India were 288 for 2 in their first innings at stumps on day 1 of the first test against host Sri Lanka at Goa International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and opted to bat first. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आइए सुनते हैं जिला हॉस्पिटल तवांग के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेंजिन कुंगा से प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन और प्रसव उत्तर में देखभाल के महत्व विषय पर एक भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है सिटिम यांचिन।
2: तवंग से प्रसारित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर तेंजिन कुंगा जी को, जो खंडो डोहा सामो जिला अस्पताल तवंग के गायनोकोलॉजिस्ट और साथ ही मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी।
3: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: जी, तो श्रोताओं, आज हम डॉक्टर साहब से गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जिसे हम एंटीनेटल या प्रीनेटल चेकअप कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सही समय पर जांच माँ और होने वाले शिशु दोनों के लिए सुरक्षित होता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एंटीनेटल या प्रीनेटल चेकअप क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी है।
3: एंटीनेटल चेकअप्स एक बार जब महिला गर्भवती हो जाती है, तब से लेके जो प्रसव जो प्रक्रिया है वो जब तक शुरू नहीं होता, ये जो दौरान है इसको एंटीनेटल पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में हम चाहते हैं कि जो गर्भवती महिला है वो नियमित रूप से हमारे पास में चेकअप्स के लिए आए, ताकि अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है माँ में, वो बहुत पहले ही हमारी नजर में आ जाए, जो रेमेडियल एक्शन हो जो हम ले पाए, ये पहला चीज है। दूसरा चीज ये है, एंटीनेटल चेकअप्स इसलिए भी जरूरी है, बच्चा गर्भ में आने के बाद जो ग्रोथ है, जिस रेट से उसको ग्रो होना है, वो ग्रोथ ठीक है कि नहीं है, वो हमें देखना होता है, तो इसलिए भी ये जरूरी है। और तीसरा चीज ये है, एंटीनेटल पीरियड में जो शुरुआती जो पीरियड है वो एकदम नॉर्मल रहता है, धीरे धीरे करके माँ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, तो जो कॉम्प्लिकेशंस बाद में डेवलप हो उन्हें भी हमें पिकअप करना है
2: जी।
3: तो इसीलिए अगर माँ नियमित रूप से हमारे पास में आ रही है, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर रहता है उस गर्भवती महिला को लेके कि इनका ये कंडीशन है, उसको हम लोग उसी तरह से शुरू से केयरफुली और एकदम प्लान वे में डील कर सकते हैं
2: जी। तो ये जो एंटीनेटल चेकअप है, ये केवल माँ के लिए ही नहीं बल्कि घर में पड़ रहे बच्चे के लिए भी सुरक्षित है।
3: एकदम सही
2: जी। जब एक महिला को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो खुशी के साथ साथ थोड़ा डर भी होता है, तो ऐसे में सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए? जब गर्भ ठहरते हैं तो पहला जांच कब कराना चाहिए और पूरी गर्भावस्था के दौरान कम से कम कितनी बार जांच करानी चाहिए?
3: एक शादीशुदा महिला के लिए जो सबसे नेचुरल चीज है वो है गर्भवती होना। तो शादी के बाद अगर वो गर्भवती होती है तो ये खुशी और उल्लास का तो वजह है ही, आपने जैसे बताया इसमें थोड़ा सा एंजाइटी वाला एंगल भी रहता है। तो इसीलिए जब कोई महिला शादीशुदा रिश्ते में जाती है तो उसके बाद में कायदे से तो उनका काउंसलिंग होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, बट हमारे जैसे सेटअप में वो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या है, जो महिला का सपोर्टिंग जो एल्डर्स हैं उनको, उस महिला को प्राइम करे कि आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो आपको प्रेगनेंसी आना आपके लिए सबसे नेचुरल चीज है। तो वो काउंसलिंग दो नॉट प्रोफेशनल वे में, एक सोशल

0: वो काउंसलिंग हो सकते हैं तो वो करना चाहिए। हमारे यहाँ एक प्रथा है, गर्भवती जैसे ही एक महिला हो जाती है तो वो किसी को बताती नहीं है, अगर बता दो तो नजर लग जाएगा। मेरा मानना ये है कि ऐसा भी सोच है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे ही आपका मासिक जो बंद होता है, आपको पता लगता है कि आप गर्भवती हो गई है, तो आपको चेकअप के लिए आना चाहिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेयर है कंडीशन, लेकिन कभी कभार प्रेगनेंसी जो है वो गर्भाशय में नहीं आके जो ट्यूब्स में है वहां आया होता है या कहीं और भी आ सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो आइए, हम देखेंगे जो गर्भ ठहरा है वो सही जगह में ठहरा है कि नहीं ठहरा है और सब कुछ सही है कि नहीं, तो वहां से वो जर्नी शुरू होता है। थियोरेटिकली तो 7वें महीने तक हर महीने जो गर्भवती महिला है उसको महीने में एक बार चेकअप के लिए आना चाहिए, फिर 8वें महीने से 2 वीक में एक बार करके आना है, और आखिरी जो महीना है उसमें वीकली चेकअप्स के लिए आना है। तो ये तो एकदम आइडियल सिचुएशन में है, बट सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना सुजोग नहीं होता है। अगर एकदम ही नहीं आ पाते हैं तो गवर्नमेंट जो हमारा NHM का जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक मिनिमम 4 ANCs होना ही है। 4 ANCs इसलिए कि 1 in the first trimester, 1 in the mid trimester, 1 in the late trimester एंड 1 in the last।
1: जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि किसी को बताता नहीं है जब गर्भ ठहरता है, कई बार भी ऐसा देखा जाता है कि कुछ कारणवश महिला गर्भ धारण करने के बाद अपने परिवारजनों से बात को साझा नहीं करते हैं और एक बार भी डॉक्टर से जांच भी नहीं करवाते हैं, अस्पताल भी नहीं जाते हैं, तो ऐसे में कितना खतरनाक हो सकता है महिला और शिशु दोनों के लिए?
0: अगर ऐसा एक सिचुएशन आया जिसमें महिला ने कभी चेकअप्स नहीं कराया है, किसी को नहीं बताया और वो प्रसूति में एकदम से ब्लैंड करती है, तो हमारे लिए ये सिचुएशन बहुत दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि इसमें ना माँ का फुल पिक्चर हमारे सामने होता है ना बच्चे का फुल पिक्चर हमारे सामने होता है।
1: जी, तो ऐसे में माँ और बच्चे दोनों को खतरा
0: कॉम्प्लिकेशन, हाँ दोनों को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ क्या है, बच्चे का कंडीशन क्या है उस वक्त हमें कुछ नहीं पता है, और फॉर दैट मैटर माँ का भी जो सिचुएशन है वो हमें नहीं पता है। तो उस वक्त अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन मिलता है तो वो कॉम्प्लिकेशन हमें बहुत मुश्किल हालात में डील करना पड़ता
1: है। जी, तो एक नियमित एंटीनेटल चेकअप में कौन कौन सी जांच की जाती है?
0: जब एक गर्भवती महिला चेकअप्स के लिए आती है तो सबसे पहले तो हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और उनका जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद में उनका जो खून का जांच होता है उसमें फिर हम उनका सीरोलॉजी वगैरह भी देखते हैं, फिर अगर हमें लगा कि जरूरत है तो हम अल्ट्रासाउंड भी करके देखते हैं।
1: जी, महिला को जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको कंसीव करने में भी थोड़ी दिक्कतें आती है, कंसीव करने के बाद कभी कभी खराब हो जाता है, तो ऐसे भी सिचुएशन आता है?
0: अगर कोई महिला पहले से उनको हाई BP है तो उनको कंसेप्शन में दिक्कत आ सकता है, और अगर उन्होंने कंसीव भी किया तो एबॉर्शन का चांसेस बहुत हाई रहता है। बट उसको छोड़ के एक और कंडीशन है जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में जो महिला है वो पहले से हाइपरटेंसिव नहीं होती है, जब गर्भ ठहर के 5वां महीना चढ़ता है, 5वें महीने के बाद में धीरे धीरे उनका जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ने लगता है, तो वो कंडीशन है जिसको हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये कंडीशन फिर आगे जाके अगर उसका यूरिन में प्रोटीन वगैरह आने लग गया तो उसको प्रीएक्लिम्शिया करके डिजिग्नेट करते हैं। फिर ये प्रीएक्लिम्शिया अगर किसी को डेवलप होता है तो वो इनडायरेक्टली ये दिखाता है कि बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी माँ का प्रेशर बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल इश्यूज, जो बच्चा का जो प्लासेंटा से जो परफ्यूजन आता है, जो स्टूल है वहां से जो बच्चे को ब्लड आता है वो सब थोड़ा सा कम आने लगता है, इस कारण से बच्चा का ग्रोथ भी ठीक से नहीं होता है। तो ऐसा हुआ तो वो कंडीशन है प्रीएक्लिम्शिया, और कभी कभार बहुत ग्रेव एक कंडीशन डेवलप होता है प्रीएक्लिम्शिया के बाद भी अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है माँ का, तो उनको झटके आने शुरू होते हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाती है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्लिम्शिया। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है कॉम्प्लिकेटेड एक प्रेगनेंसी का।
1: तो ब्लड प्रेशर जो पेशेंट है यानी माँ को प्रेशर है तो वो दवाई भी ले सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान? हाँ, ब्लड प्रेशर की,
0: हाँ ऐसे बहुत से दवाई हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है, तो हम वही प्रिस्क्राइब करते हैं और उनके प्रेशर को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं।
1: जी, तो गर्भावस्था के दौरान खान पान का भी बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तो गर्भावस्था के दौरान खान पान में कौन कौन सी बातों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा?
0: सबसे दिक्कत वाला पीरियड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जब माँ को उल्टियां हो रही होती है, तो उस दौरान बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एक्सेस बदन का कंडीशन ऐसा रहता है कि माँ कुछ भी खाना नहीं चाहती है, तो उस दौरान अगर वो सॉलिड्स नहीं ले पाती है या मील्स नहीं खा पाती है तो शी कैन सब्स्टिट्यूट इट विथ जूसेस एंड फ्रूट्स एंड स्मॉल मील्स, छोटे छोटे मील्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा करके वो कंपनसेट कर सकती है। बिसाइड्स दैट उस दौरान कुछ दवाएं ऐसा है जो नौशिया वगैरह को कम करती हैं, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो क्रॉस होने के बाद में फिर बेसिक जो मैसेज है वो ये है कि एक बैलेंस डाइट चलना चाहिए माँ का, अगर हो सके तो एक एक्स्ट्रा मील, क्योंकि ये

0: टाइम जो ऐसा है जिसमें माँ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का जरूरत होता है।
1: जी, वैसे गर्भावस्था के समय में बहुत सी समस्या आते हैं, लेकिन ऐसे कौन से लक्षण है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास आकर संपर्क करना चाहिए?
0: कोई भी ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान में मैटर ऑफ कंसर्न है, तो उसमें तो आपको आना ही है। और दूसरा चीज है, आपका पैर फूल रहा है, चेहरा फूल रहा है, और आपको कभी बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, नजर आपका थोड़ा सा कमजोर सा लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा आपको अच्छे से, कभी कभार बहुत एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत ज्यादा पेट में दर्द उठ रहा है, ये सब कंडीशन दिखाता है कि आपको प्रीक्लिम्पसिया सीवियर वाला डेवलप हुआ है। और एक चीज है जिसका मतलब खासा ध्यान रखना चाहिए, बच्चा हिल रहे कि नहीं, बच्चे का मूवमेंट्स, उसका एकदम अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।
1: जी, हालांकि वाहनों की आवाजाही हर जहां पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी दूर दराज के महिलाएं हैं, तो उनका जब एंटीनेटल जांच कराना होता है तो वो कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं अपने एंटीनेटल चेकअप को लेकर?
0: हमने यहाँ दो डेज डेजिग्नेट करके रखा है, मंडेज एंड थर्सडेज, इन डेज में हम एंटीनेटल चेकअप्स करते हैं। और बिसाइड्स दैट, उनको यहाँ आना ही जरूरी नहीं है, उनका जो नियरेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहां जाके वो अपना रूटीन चेकअप कर सकते हैं। वहां का जो भी डॉक्टर है या जो भी हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर है, उनको ये लगता है कि उनको एक बर्तावांग बेच के यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, तो वो हमें रेफर कर सकते हैं।
1: जी, आज भी लोगों की मान्यता है, आज भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जमाने पे तो घर पर ही बच्चे पैदा हो जाते थे, तो फिर अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? तो ऐसे में अस्पताल में प्रसव कराना कितना जरूरी हो जाता है?
0: एक बार जब लेबर पेन्स शुरू हो जाता है, या फिर वो ही नहीं, प्रेगनेंसी पीरियड और ये जो डिलीवरी वाला जो टाइम होता है, इस दौरान ऑल ऑफ ए सडन अचानक से कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन माँ में भी आ सकता है, कॉम्प्लिकेशन बच्चे में भी आ सकता है। बच्चे में कॉम्प्लिकेशन से मेरा ये मतलब है, कभी कभार जो प्रसव प्रक्रिया में बच्चे को डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, बच्चा नीचे उतरता नहीं है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण बच्चे को दिक्कत शुरू हो जाता है, तो तब तुरंत इंटरवीन करके बच्चे को निकालना होता है। और कभी कभार ऐसा होता है, प्रसव प्रक्रिया एकदम अच्छे से संपन्न हो गया, लेकिन उसके बाद में जो बच्चादानी है वो सिकुड़ता नहीं है, तब वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन किसी भी टाइम ऑल ऑफ ए सडन शुरू हो सकता है, अचानक शुरू हो सकता है। तो अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में डिलीवर करते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको अच्छे से केयर करने के लिए लोग हैं, तो इसीलिए क्या है, आप अगर एक इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करते हैं तो आपका जो कॉम्प्लिकेशन यदि हुआ भी है तो उसको डील करके आपका आउटकम जो है माँ बच्चे का, वो आउटकम अच्छा होने का चांसेस थोड़ा अच्छा रहता है।
1: जी, तो अस्पताल में प्रसव कराने से बहुत से फायदे हैं, माँ को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी। जैसे ही बच्चे जन्म हो जाते हैं तो आपके वहाँ पे टीकाकरण भी किया जाता है।
0: हाँ।
1: कि आने वाले जो खतरनाक बीमारियां हैं उससे बचाने के लिए।
0: हाँ।
1: तो आपके वहाँ पे जब शिशु को टीकाकरण लगाया जाता है तो कौन कौन सी बीमारियों को रोकने के लिए लगाया जाता है?
0: अभी जो लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें तो बहुत से बीमारियों को कवर किया हुआ है। बिसाइड्स दैट, टीकाकरण से पहले का बात एक मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक नॉर्म रखा हुआ है कि डिलीवरी के बाद भी आपको 48 आवर्स वहां रुकना है। अब ये 48 आवर्स वाला जो पीरियड है वो इसलिए रखा गया है कि आफ्टर डिलीवरी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो माँ जो है, बच्चा जो है, दोनों हमारी निगरानी में रहे। हम एक और अच्छा चीज करते हैं, वो है ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करना। ब्रेस्ट फीडिंग अगर नॉर्मल हुआ होगा तो विद इन 1 आवर हम इनिशिएट करते हैं, और कायदे से 1 आवर में इनिशिएट होना चाहिए, वो अटैचमेंट बोलते हैं उसको, तो 1 आवर में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करके एंड टिल 6 मंथ्स इट हैज टू बी कंटिन्यूड। 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग जब इनिशिएट करते हैं उस टाइम जो माँ का पहला जो मिल्क निकलता है वो थोड़ा सा गाढ़ा पीला कलर का होता है। तो हमारा यहाँ एक प्रथा है, मैंने बूढ़ी औरतों से सुना है कि वो उसको गंदा समझ के निचोड़ के फेंक देते हैं। वेरिस उस चीज को हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉम में बहुत से एंटीबॉडीज ऐसे हैं जो माँ बच्चे को दे रहा है, जो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा बीमारियों से, तो वो बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो पहला कोलेस्ट्रॉम वाला मिल्क है वो बच्चे को पहुंचना ही चाहिए। एक बार ब्रेस्ट फीडिंग आपने इनिशिएट कर दिया तो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, आपको बाहर से पानी तक देने का जरूरत नहीं है।
1: जी, कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि कोई माता जब बच्चे को जन्म देने के बाद उनके ब्रेस्ट से दूध बिल्कुल भी नहीं निकलता है, तो ऐसे में क्या ऑप्शन रहता है कि वो क्या करे, बच्चे को क्या खिलाए?
0: जनरली ये जो कंडीशन डेवलप होता है वो फर्स्ट टाइम जो मदर बनती है उनमें डेवलप होता है। तो ये जो कंडीशन है वो बेसिकली जो बच्चे को ब्रेस्ट के साथ में जो अटैच करते हैं वो अगर आपका ढंग से नहीं होगा तो वहां से ये चीज इनिशिएट होती है। तो इसीलिए ये जो 48 आवर्स का जो पीरियड है इसमें हमारा जो पीडियाट्रिक्स का जो ट्रेन नर्सेस है वो लोग आएंगे, वो लोग जो फर्स्ट टाइम मदर हो या सेकेंड टाइम मदर हो उसको अच्छे से ट्रेन करेंगे, ट्रेन करके और

0: 99% लोगों में ये ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से इनिशिएट हो जाता है। अगर किसी में इनिशिएट नहीं होता है तो फिर देट इज एक्सेप्शन, और उसमें हो सकता है कोई और कंडीशन हो जिसके लिए जांच जरूरी है।
1: जी, तो लोगों का मानना है कि जब गर्भावस्था के दौरान कहते हैं कि आराम करना चाहिए या फिर आपको ज्यादा काम करना चाहिए, जैसे कि गांव वालों का मानना है कि मैं खेती करती हूँ ज्यादा, खेती में ही मेरा बच्चा पैदा हो गया।
0: मेरा ये मानना है और ये नेचुरल भी है कि एक गर्भवती महिला का सबसे नेचुरल चीज है प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से कैरी करना और आखिर में पहुंच के इट इज वेरी नेचुरल फॉर दैट वुमेन टू डिलीवर, नॉर्मली डिलीवर करना। तो ये एक नेचर का जनरल प्रोग्रेशन है। अब इसमें बहुत ज्यादा काम करना मेरे ख्याल से प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हानिकारक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सर्ट करोगे तो आपका बच्चा है उसको दिक्कत होगा। और द सेम थिंग गोज फॉर रेस्ट, आप अगर बहुत ज्यादा रेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा खा रहे हो, वो भी फिर नुकसान ही करेगा। आप बहुत ज्यादा वेट गेन करोगे तो उससे फिर अलग कॉम्प्लिकेशन शुरू होगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा केयरफुल होके, मतलब पैरानॉइड वे में केयरफुल होने का भी जरूरत नहीं है। जो आपका नॉर्मल दिनचर्या है उसको आप कीजिए, ब्रिस्क वॉक करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोड उठाना, हेवी काम करना, वो एकदम ही मनाही है उसका।
1: जी, आप इसके बाद में आपसे सीजरेन के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगी। तो सीजरेन से ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन असल में ये सीजरेन क्या है और ये कब करना जरूरी हो जाता है?
0: सीजरेन सेक्शन का जो ऑब्स्टेट्रिक्स में जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स, उसमें सीजरेन सेक्शन का एकदम डिफाइन इंडिकेशंस है। डिफाइन इंडिकेशंस से मेरा ये मतलब है कि इन इन कंडीशंस में आपको सीजरेन करना ही है, उसमें आपको नॉर्मल की ओर जाना नहीं है। तो सीजरेन सेक्शन एक ऐसा कंडीशन में बच्चे को निकालना जब किसी कारण से बच्चे को दिक्कत होने का चांस है या माँ को दिक्कत होने का चांस है या दोनों को दिक्कत हो रहा है, तो इस कंडीशन में सीजरेन सेक्शन करना जरूरी है। सीजरेन सेक्शन से डरने का तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि है तो मतलब मेजर ऑपरेशन ही है, बट सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में ऑपरेशन होता है वो सीजरेन सेक्शन ही होता है।
1: जी, तो सीएस के बाद माँ को कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पर सीएस किया है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये क्यों होता है?
0: सबसे पहले तो मैं सीजरियन सेक्शन का ही नहीं, अदरवाइज भी एक बार डिलीवरी होने के बाद में, जिसमें डिलीवरी के बाद जो पीरियड है उसको पंग बोलते हैं।
1: जी जी,
0: हमारे यहाँ एक प्रथा है जो पंग का ये ड्यूरेशन है, इसमें खाना पीना में बहुत परहेज करते हैं, खासकर यहाँ जो एडमिट होते हैं उनको देखा है, उनको खिचड़ी एकदम ब्लैंड सॉर्ट ऑफ खिला के रखते हैं। तो माई कंटेंशन इज दैट डिलीवरी के बाद में परहेज करने का कोई जरूरत नहीं है।
1: जी,
0: Until unless there is some condition like diabetes या कुछ है जिसमें परहेज करना है, अगर आपका सीजरियन हुआ है, नॉर्मल हुआ है, आपको कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, तो आपके डाइट में कोई परहेज का जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ ये परहेज का वजह से थोड़ा सा इम्यूनिटी लो होके इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है। साफ सुथरा नहीं है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है।
1: जी,
0: और ये सब कंडीशन है जिसका वजह से इन्फेक्शन हो सकता है।
1: जी, कहते हैं कि 20 साल से लेकर के 35 साल की जो उम्र है इसमें बच्चे अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाते हैं। अभी देखते हैं हम छोटे छोटे जो लड़कियां हैं उनका भी सीजरेन कराना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है। तो आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों होता है?
0: ये जो ऑपरेशन है ये तभी किया जाता है जब इंडिकेशन एकदम क्लियर कट होता है, किसी कारण से माँ को दिक्कत या बच्चे को दिक्कत होने का संभावना होता है। और जैसा आपने बताया, आजकल जो सीजरियन सेक्शन रेट बढ़ना ये ट्रेंड सब जगह ही है। मेरा मानना ये है डेमोग्राफिक चेंज थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि पहले एक टाइम था, मतलब बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोल सकते हैं, जो ऐसी औरतों का पॉपुलेशन ज्यादा था जिनका पेल्विस अच्छा था या दे वर वेरी मच एबल टू डिलीवर नॉर्मली, या फिर ये भी हो सकता है कि तब भी बहुत सा डेथ्स हुआ होगा प्रसूति के टाइम पे, लेकिन ह्यूमन माइंड इज ओनली रिमेम्बर्स द सर्वाइवर्स एंड द गुड थिंग्स। तो ये एक हो सकता है, आई थिंक डेमोग्राफिक शिफ्ट भी हुआ है तो उसका वजह से भी रेट थोड़ा सा बढ़ा है।
1: जी, तो अंत में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही बोलना चाहूंगा, प्रेगनेंसी जो पीरियड है वो बहुत ही हाई रिस्क पीरियड उसको मानते हैं। यदि आप अच्छे से पीरियडिक चेकअप्स करते हैं तो हमें ये मौका मिलता है कि आपका जो भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स है उसको बहुत पहले से ही हम पकड़ लें, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करता है आपका जो बच्चे का ग्रोथ है वो सब भी हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो जब आप डिलीवरी के टाइम तक पहुंचो तब तक हमारे पास में एक अच्छा पिक्चर होता है बच्चा और माँ दोनों को लेके, तो फिर आगे जो डिलीवरी वाला जो प्रोसेस है उसको प्लान करने में या उसके दौरान जो मैनेजमेंट करने में हमारे लिए बहुत सुविधा होता। तो इसीलिए आप दूर दराज का जो भी महिला लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा जो आशा वर्कर्स है उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो ये एंटीनेटल चेकअप्स है इनको बहुत सीरियसली लें और पीरियडिकली आते रहें।
1: तो ये गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, लेकिन

0: समय पर अगर जांच ना हो तो जोखिम भरा हो सकता है।
1: एकदम सही
0: जी,
1: एकदम सही
0: जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता है उनको इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से लोग आज के कार्यक्रम सुन के जागरूक हो पाएंगे। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी।
1: थैंक यू सो मच मुझे ये मौका दिया, थैंक यू।
2: श्रोता, अभी आपने सुना जिला हॉस्पिटल तवांग के स्त्री रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर तेंजिन कोंगा से प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर में देखभाल के महत्व विषय पर भेंट वार्ता, उनसे भेंट करता थे सिटिम यांगजिन। श्रोता, इसी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा भी यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता, समय शाम के 7:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है दोनों गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज। आइए पहले सुनते हैं फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से यह धुन।

आयशोतो आनंद लेते हैं इसी धुन को। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल सरों में। इस गीत के गीतकार है समीर तथा संगीतकार है नदीम श्रवण।

शोतन कुमार सानू और अकेडमी के गाये फिल्म तुमसे अच्छा कौन है केसी नकवी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर आप सुन सकेंगे रीजनल

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। देश भर में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किले पर वंदे मातरम का जय घोष एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा है कि देश पूरे उत्साह और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है।

श्रोतों, अभी आपने सुना फिल्म योद्धा से भी पराग की आवाज में यह देशभक्ति गीत। इस गीत के गीतकार थे मनोज मुंतशिर और शुक्ला तथा संगीतकार थे तनिष्क बख्शी। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आपसे कुछ ही पलों में, यानी रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर विशेष संयुक्त रेडियो रिपोर्ट। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। प्रस्तुत है अरुणाचल प्रदेश में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न समारोह पर आधारित विशेष कॉम्पोजिट रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पासीघाट, तवांग, तेजू और जीरो केंद्र से भी एक साथ प्रसारित किया जा रहा है। आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, गर्व और देशभक्ति की भावना के साथ मना रहा है। 1947 में इसी दिन भारत ने लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की थी। ये दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली। स्वतंत्रता दिवस हमें देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी और डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करने का संदेश देता है। देश के पूरे हिस्सों की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। राज्य का मुख्य समारोह राजधानी ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित किया गया।

0: समारोह के मुख्य अतिथि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने मंत्री परिषद के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, सीनियर ऑफिसर्स और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने पुलिस महानिदेशक के साथ खुली जीप में सवार होकर परेड का इंस्पेक्शन किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में अरुणाचल प्रदेश पुलिस, आर्म पुलिस फोर्सेस, होम गार्ड्स, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न स्कूल्स के विद्यार्थियों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया।
1: एंड नाउ मार्चिंग विद कॉन्फिडेंस एंड इम्पेकेबल डिसिप्लिन इज द अरुणाचल प्रदेश पुलिस लेडी प्लाटून कमांडेड बाय लेडी सब इंस्पेक्टर टेची सुम्निया एंड लेडी कांस्टेबल दिव्या उपाध्याय एज प्लाटून 2IC।
0: अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया।
2: मेरे प्यारे अरुणाचल प्रदेश के वासियों, आज स्वतंत्रता दिवस और वो भी 80 साल हम लोग मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। आज के इस दिन में हम सभी को उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिसके बलिदान के कारण आज हम सबको इस अच्छा दिन देखने को मिल रहा है।
0: इस साल का स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए खास है। देश राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है।
2: इस साल केवल हम लोग 80 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन नहीं चल रहा है बल्कि साथ ही साथ 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम उसका भी सेलिब्रेशन चल रहा है। जैसे थोड़ा देर पहले हम लोग ने जो फुल गीत वंदे मातरम को हम लोग को सुनने का मौका मिला। आज रेड फोर्ट से लेके देश के जितने भी हमारा जो राज्य है उन सभी राज्य में ये वंदे मातरम का फुल गीत जो गाया जा रहा है। हम लोग ने ऐसा भी दौर देखा कि वंदे मातरम का जो ओरिजिनल गीत को भी काट के दो पैराग्राफ में सीमित करके रखा था, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी हमारा सीनियर लीडर्स हैं उन सभी लोग ने निर्णय लिया कि वंदे मातरम का गीत गाना है तो हम लोगों का पूरा गीत हम लोगों को गाना होगा। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी अरुणाचल प्रदेश के जनता, खास करके हमारा जो युवा दोस्त है, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वंदे मातरम का पूरा गीत आप सब लोगों को सीखना ये बहुत ही आवश्यक है।
0: मुख्यमंत्री ने हाल की बाढ़ और भूस्खलन में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी सिंपैथी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के साथ असम और नागालैंड नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अफेक्टेड फैमिलीज के साथ सॉलिडरिटी जताते हुए रिलीफ और रिहैबिलिटेशन वर्क जारी रखने की कमिटमेंट दोहराई।
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार के मानसून के कारण से, बारिश के कारण से नॉर्थ ईस्ट में काफी असर हुआ है, खास करके अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश, हमारे पड़ोसी जो राज्य है असम और पड़ोसी जो राज्य है नागालैंड, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये तीन राज्यों में काफी इसका डैमेज हुआ है। केवल डैमेज ही नहीं बल्कि ह्यूमन लाइफ भी लॉस्ट हुआ है। सो आज अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

0: अपना कंडोलेंस कन्वे करता हूं उन फैमिली को जिनका परिवार इस दुर्घटना में गुजर गया है। मैं सभी अरुणाचल प्रदेश के वासियों को अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ये आश्वासन देता हूं कि इस बार का जो फ्लड का जो डैमेज हुआ है उसको हम लोग तुरंत जल्द से जल्द हम लोग रिस्टोर करेंगे।
1: मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि पिछले वर्ष इसी मंच से विकसित अरुणाचल के लिए 5 प्रतिज्ञाएं ली गई थीं। इसमें बेहतर एजुकेशन, समृद्ध किसान, नेचर के साथ बैलेंस बनाकर डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल टूरिज्म शामिल हैं। 5 प्रतिज्ञाओं में सस्टेनेबल टूरिज्म को भी खास जगह दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टूरिज्म को इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा इंजन बनाना है, लेकिन साथ ही नेचर, कल्चर और हेरिटेज को भी बचाना है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में राज्य में टूरिस्ट की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ी है।
0: यदि आप लोगों को याद होगा तो पिछले बार जो इंडिपेंडेंस डे हम लोग जो मनाया, मैंने राज्य को कुल मिला के 5 प्रतिज्ञा का ऊपर में हमने जिक्र किया। हमारा टूरिज्म सेक्टर जिसको हम लोग इंजन ऑफ ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारे यहाँ पे जो पिछले 10 साल में जो टूरिस्ट फुटफॉल हुआ है 3 टाइम्स से भी ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल अरुणाचल को देखने को मिल रहा है। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अमित शाह जी द्वारा एक नया प्रोजेक्ट जो शुरुआत किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP प्रोग्राम के अंतर्गत में माननीय होम मिनिस्टर वहाँ किबितो में आते हुए अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पूरे नॉर्दर्न बेल्ट देश भर का प्रोग्राम जो है वहाँ से ही लॉन्चिंग हुआ है। और आज देखिए उन सारा प्रोग्राम्स के इंटरवेंशन के कारण से अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर टूरिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो वो बॉर्डर गांव जो उस पुराना जमाने में लास्ट विलेज जाना जाता था, आज उस गांव को फर्स्ट विलेज के नाम पे जाना जाता है। सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत अरुणाचल में 2,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन 455 विलेजेस में अभी चल रहा है।
1: युवाओं में बढ़ती ड्रग एडिक्शन को सीरियस चैलेंज बताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का जिक्र किया। उन्होंने हर नागरिक से इस कैंपेन का एक्टिव पार्टनर बनने की अपील की।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास करके हमारा युवाओं को ड्रग्स से दूर रहने के लिए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान 100 वीक्स का टारगेट देते हुए ये लॉन्चिंग किया है। तो मैं अनुरोध करेंगे कि हम सभी जो पब्लिक लीडर्स हैं, समाज के जो एल्डर्स हैं, युवा लोग हैं, इस 100 वीक्स प्रोग्राम्स में हम लोगों को आगे बढ़कर ड्रग्स को लेके समाज में हम लोगों को चर्चा करना है। ड्रग्स से जो लोग पीड़ित हैं उसको हम लोगों को सपोर्ट करना है, उसको हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लेके ताकि वो रिहैब करके कुछ स्किलिंग सीख के फिर वो अपना जिंदगी आराम से आगे बिता पाए, इस तरह का हम लोगों को काम करना ये बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश का, राज्य का फ्यूचर हमारे युवाओं लोग हैं और युवाओं को सही दिशा में लेके जाने के लिए हम सभी का जिम्मेदारी होता है। जो भी ड्रग्स से पीड़ित है उसको मदद करने में हम सबका बड़ा योगदान होना चाहिए। तो मैं अनुरोध करेंगे जो PM साहब ने जो मिशन लॉन्च किया है 100 वीक्स का, उसको हम लोग साथ देना ये बहुत ही आवश्यक है।
1: उन्होंने ये भी बताया कि अब तक राज्य के 20 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है।
0: साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ अपना ट्राइबल आइडेंटिटी को भी हम लोग को आगे लेके जाना बहुत

0: की प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। आने वाला दिनों में मैंने और भी टारगेट दिया कि 30 मोर जीआई टैग्स हम लोगों को प्राप्त करना है। कुल मिला के 50 तक जीआई टैग को हम लोगों को आगे लेके जाना है।
1: उन्होंने कहा कि युवाओं के आइडियाज, एनर्जी और टैलेंट डेवलप्ड अरुणाचल बनाने में बड़ी ताकत बन सकते हैं।
0: अरुणाचल प्रदेश का जो युवा शक्ति है वेरी टैलेंटेड, केवल उनको हम लोगों को अच्छा दिशा हम लोगों को दिखाना है, अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड करना है। जो आजकल हमारे जो जेन जी या जेन अल्फा, दे आर मार्वेलियस टैलेंटेड, सो गवर्नमेंट इज वेरी इंक्लूसिव। कुछ भी चीज होता है आके बात कीजिए, आपके जो सोच को गवर्नमेंट पॉलिसीज में हम लोग किस प्रकार से उसको इनकॉर्पोरेट करके आप लोगों को जो मौका देंगे, सो गवर्नमेंट इज योर गवर्नमेंट, बहुत ही इंक्लूसिव है। आप लोग हमेशा आगे आके बातचीत करके जो भी एस्पिरेशंस है उसको आप लोग जरूर चर्चा करना है।
1: इसके पश्चात राज्य के मुख्य सचिव श्री मनीष कुमार गुप्ता मंच पर आए और स्टेट अवार्ड पाने वाले लोगों के नामों की घोषणा की। उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किए जाने के दौरान पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। समारोह में अरुणाचल प्रदेश की रिच ट्राइबल कल्चर की खूबसूरत झलक भी देखने को मिली। विभिन्न कल्चरल ग्रुप्स और स्टूडेंट्स ने शानदार परफॉर्मेंसेस प्रस्तुत की।

0: 80वां स्वतंत्रता दिवस लोक भवन ईटानगर में भी मनाया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक सेवानिवृत्त ने राष्ट्र ध्वज फहराया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आइए सुनते हैं गिदी निसिंग और चौकीन आरन की ये रिपोर्ट।
1: The 80th Independence Day of India was celebrated with patriotic fervor at Lok Bhavan, Itanagar today. The Honorable Governor of Arunachal Pradesh, retired Lieutenant General K.T. Parnayak, hosted the national flag at the Lok Bhavan premises and received the ceremonial guard of honor and addressed the gathering by extending his warm greeting.
2: Namaskar sabko. Aaj Lok Bhavan ke sabhi karyakarta yahan upasthit hain. और भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के आनंदमय और ऐतिहासिक अवसर पर मैं सभी यहां उपस्थित नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
1: The governor paid rich tribute to the freedom fighter whose sacrifice laid the foundations of an independent India. In his address, governor paid special tribute to Arunachal Pradesh revered freedom fighter late Mahathmur Jamo, acknowledging his invaluable contributions to the freedom movement.
2: स्वतंत्रता दिवस उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की पवित्र याद दिलाता है जिन्होंने साहस दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा के जरिए हमें आजादी दिलाई। जब हम राष्ट्रीय महापुरुषों और अरुणाचल प्रदेश के अपने स्वतंत्रता सेनानियों जिनमें 1911 के एंग्लो अबोर संघर्ष के दौरान अपनी जान देने वाले भी शामिल है उनको श्रद्धांजलि देते हैं।
1: द गवर्नर ऑल्सो हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ 150 एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम डिस्क्राइबिंग इट एज अ टाइमलेस सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म and national unity. The governor also emphasized the importance of inclusive growth, youth empowered men and women participations in nation's building. Ms. Golu Anya, a student of Donyi Polo Mission School for the Hearing and Visually Impaired, Chimpu, represented Let's Speak Arunachal NGO and shared few words on India's independence history during the celebration. The celebration was followed by a felicitation ceremony for the winners of the Raj Bhavan Sports Week. Among the various awardees, Subhedar Karan Singh Shekhawat was also felicitated by the Honorable Governor of Arunachal Pradesh for being conferred the honorary rank of Lieutenant by the President of India through Chief of Army Staff in recognition of his distinguished service. Ms. Gayir Atta Rina, Program Executive of Akashwani Itanagar, was also presented with a citation by the Honorable Governor of Arunachal Pradesh.
0: स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों की ये विशेष कंपोजिट रेडियो रिपोर्ट। प्रकृति और कल्चर के सुंदर संगम के लिए प्रसिद्ध ईस्ट सियांग की पहचान विशाल सियांग नदी से भी है। पासीघाट में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। पासीघाट वेस्ट के MLA श्री तापी दारांग ने जनरल ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। तो आइए

0: सुनते हैं आकाशवाणी पासीघाट की ये विशेष रिपोर्ट।
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमें पंख दिए। आइए ऊंची उड़ान भरे 15 अगस्त 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भारत के अन्य हिस्सों की तरह अरुणाचल प्रदेश के सबसे पुराने शहर पासीघाट के आउटडोर स्टेडियम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर 80वां स्वतंत्र दिवस को हर्ष उल्लास के साथ इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इस उत्सव का हिस्सा बने स्थानीय माननीय विधायक श्री तापुदारंग विशेष अतिथियों के रूप में इस स्वतंत्रता दिवस पर SP ईस्ट सियांग के अलावा जिला के अलग अलग भागों के अधिकारी शामिल हुए और हर वर्ष की तरह आसपास के बस्तियों से आए बुरी की उपस्थिति भी हमें देखने को मिली। साथ ही इस कार्यक्रम का आकर्षक केंद्र रही परेड दल। साथ ही अलग अलग स्कूल्स के छात्र द्वारा प्रस्तुति रंग बिरंगे कार्यक्रम आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक केंद्र रहे। मुख्य अतिथि के रूप में आए स्थानीय विधायक श्री तापुदारंग द्वारा अपने संबोधन में कहा,
2: इस पवन अवसर पर 80वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं पूर्वी सियांग और अरुणाचल प्रदेश के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हूँ। आज जब हम गर्व के साथ तिरंगा पहरा रहे हैं, हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनाओं को कृतज्ञता के साथ याद करना चाहिए, जिनके साहस और बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। उनका बलिदान हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी के साथ एक मजबूत एकजुट एक समृद्धि देश बनाने की जिम्मेदारी भी जरूरी है। पासीघाट लगातार भविष्य की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 43 में से 42 परियोजना पूरी हो चुकी है।
0: अब चलते हैं सीमांत जिला तवांग की ओर। बर्फीली पहाड़ियों, खूबसूरत झीलों और बुद्धिस्ट कल्चर के लिए प्रसिद्ध तवांग के विधायक श्री नामगे सिरिंग ने जनरल परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अब सुनते हैं आकाशवाणी तवांग की ये विशेष रिपोर्ट।
3: देश के अन्य हिस्सों के साथ आज तवांग जिला मुख्यालय में भी 80वीं स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। तवांग में आज सुहाना मौसम के बीच आज का मुख्य समारोह जनरल परेड ग्राउंड तवांग में मनाया गया, जिसमें आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक तवांग श्री नामगे सिरिंग ने ध्वज फहराया। आज के समारोह में 38 बटालियन SSP तवांग, डिस्ट्रिक्ट पुलिस तवांग, NCC बॉयज एंड गर्ल्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग, NCC बॉयज एंड गर्ल्स गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल तवांग, NCC JNV स्कूल तवांग और विभिन्न सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मार्च पास्ट में भाग लिया। ध्वज फहराने के बाद मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली और अपने संबोधन में देश की 80वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन वीर जवानों को याद किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
4: देश के 80th इंडिपेंडेंस डे की इस खास अवसर पर मैं सभी तवांग वासियों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमें उन वीर जवानों को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम आजाद देश में सुख और शांति से रह रहे हैं। आज हम सभी उन वीरों वीर शहीदों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। साथ ही देश की सीमा पर दिन रात हमारे रक्षा करने वाले सभी वीर जवानों को भी सलाम करते हैं।
3: इसके बाद मेजर रलिंगनो बोब खातिंग और

0: के साथ आए भारतीय सेना के जवान और अधिकारियों को धन्यवाद और नमन करते हुए कहा।
1: मैं खास तौर पर मेजर रिलिक्नो बॉब खातिंग जी और उनके साथ तवंग आए भारतीय सेना के सभी जवानों और अधिकारियों को धन्यवाद और नमन करता हूँ। उन्होंने तवांग को भारत का हिस्सा बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं उन सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी नमन करता हूँ जिन्होंने कठिन समय के बावजूद तवांग में प्रशासन को सही रूप से चलाया है।
0: सन 1962 भारत चीन के युद्ध के दिनों को याद करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा,
1: सन 1962 के भारत चीन युद्ध में तवांग को बहुत नुकसान हुआ। हमारे कई घर मठ और पुराने हेरिटेज भी प्रभावित हुए। कई परिवारों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत सरकार की कोशिशों और तवांग के लोगों की हिम्मत और मेहनत से आज तवांग एक सुंदर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्थल बन गया है। मैं उन सभी बुजुर्गों को सलाम करता हूं जिन्होंने कठिन समय में भी तवांग को नहीं छोड़ा और अपने जवान भाइयों का साथ दिया। इसी वजह से आज तवांग में भारतीय सेना और आम लोगों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता और म्यूचुअल ट्रस्ट है।
0: मुख्य अतिथि के संबोधन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 17 लोगों को जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया और युसुम गांव के नए गांव बुरा को नियुक्ति पत्र से सम्मानित किया गया। हर घर तिरंगा अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर तीनों बाजार सेक्रेटरीज को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया और मुख्य अतिथि माननीय विधायक तवंग श्री नवनीत सिंह की ओर से तवंग क्षेत्र के गांव बुरास और 13 लोगों को पहली बार तवंग गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मोनपा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा रंग बिरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की और स्वच्छ भारत अभियान और ड्रग्स अब्यूज जैसे विषयों पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत की। इस तरह आज तवांग मुख्यालय में 80वीं स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस विवरण के लिए आकाशवाणी तवांग से श्री तेंजिन दोर्जी ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के साथ मैं सिटी म्याचिन आकस्मिक उद्घोषिका हिंदी।
2: अब रुख करते हैं लोहित जिले के तेजू की ओर। प्राकृतिक सुंदरता, ट्राइबल कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र में परशुराम कुंड और मिसमी संस्कृति खास पहचान रखते हैं। तेजू के जुबली ग्राउंड में एमएलए डॉक्टर मोहित चाय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मिसमी लोक नृत्य सहित कल्चरल प्रोग्राम्स भी प्रस्तुत किए गए। अब सुनते हैं आकाशवाणी तेजू की ये विशेष रिपोर्ट।
3: अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, उमंग और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय तेजू के जुबली ग्राउंड में जिला प्रशासन लोहित द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा बड़ी संख्या में आम जनता ने भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत सुबह 7 बजे आवासीय परिसरों और दुकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। मुख्य समारोह के लिए आमंत्रित अतिथियों का जुबली ग्राउंड में सुबह 8:30 बजे आगमन हुआ। सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि तेजू सुनपुरा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर महेश चाय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके बाद राष्ट्रीय गान और गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला।
4: आज से ठीक 80 साल पहले ब्रिटिश राज के 200 साल से भी अधिक राज से भारत को आजादी मिला। इस आजादी के पर्व में आइए हम सब मिलके उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सरदार भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, महात्मा गांधी जी और उनके जैसे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। पिछले 10 साल में अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी देश चौतरफा डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सबसे खुशी की बात हमारे तेजू सुनपुरा वासियों के लिए या लोहित वासियों के लिए ये है कि हमारा जो सपना गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तेजू

0: पूरा हो गया है। हमें राज्य सरकार की ओर से भी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से भी हमें परमिशन मिल चुका है कॉलेज को शुरू करने के लिए, और हमें इस कॉलेज में 30 सिविल इंजीनियरिंग और 30 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अप्रूवल मिला है। मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि टिल डेट अभी तक आने वाला सेशन के लिए 20 बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, जिसमें से 15 सिविल इंजीनियरिंग में है तो 5 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है।
1: उन्होंने राष्ट्र की एकता, विकास, सामाजिक जिम्मेदारी तथा देश के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका पर जोर दिया। स्थानीय कलाकारों और विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को प्रदर्शित किया। समारोह में देशभक्ति और अनुशासन की भावना को और मजबूत किया विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत बैंड एवं पीटी प्रदर्शन ने। वीकेवी ताफ्रागाम और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 तेजो के विद्यार्थियों ने बैंड प्रदर्शन किया। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धियों के लिए चयनित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात प्रदर्शनी स्टॉल का भी उद्घाटन किया गया, जहाँ विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं, गतिविधियों, स्थानीय उत्पादों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाते हुए देशभक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामुदायिक सहभागिता की भावना को मजबूत किया। लोहित जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस का यह समारोह देशभक्ति, सांस्कृतिक विविधता और जनभागीदारी का उत्सव बना। तेजू से मैं विनीता, आकाशवाणी के लिए।
2: हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी जीरो घाटी अपनी नेचुरल ब्यूटी, आपातानी कल्चर और ट्रेडिशनल फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। जीरो में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। जीरो हापोली के एमएलए श्री हागे अप्पा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी जीरो की ये विशेष रिपोर्ट।
3: लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जीरो में 80th स्वतंत्र दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ पादियों में आदर स्टेडियम में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, अधिकारियों, इनवाइटिस और आम लोगों की इकट्ठा होने के साथ हुई। मुख्य समारोह की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। इसके बाद 17-0 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की ऑनरेबल एमएलए श्री हागे अप्पा सर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स द्वारा राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। चिपकेस ने परेड का निरीक्षण किया और परेड में शामिल कंटिजेंट्स का सलामी ली। इसके बाद उन्होंने उपस्थित लोगों का संबोधित किया।
4: मलारोमी अलोया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदरणीय श्रीमती ओली परमेजी, उपायुक्त, आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। इस ऐतिहासिक दिन हम उन महान स्वतंत्र सेनानियों को गहरे सम्मान के साथ याद करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान किया है।
3: कार्यक्रम के दौरान निजी मिगू यार को पुस्तक का भी विमोचन किया गया। विवेकानंद केंद्र विद्यालय के स्टूडेंट्स द्वारा योगा और बैंड डिस्प्ले भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर एमएलए एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2026 और जीरो गौरव पुरस्कार अवार्ड 2026 भी प्रदान किया गया। साथ ही डिजर्विंग व्यक्तियों को अवार्ड्स, कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स और लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिए गए।
5: नाम है मास्टर कीपा मांगकोंग, पिता का नाम है श्री कीपा पानोंग, स्कूल का नाम है बुमर मेमोरियल स्कूल ऑल जीरो, क्लास 8, 95.4%। मैं फिर से दोहरा दूँ, नाम है मास्टर आकोम रोडे गापा, पिता का नाम है श्री किरण गापा, स्कूल का नाम है बानीकुया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जीरो, क्लास 9, 89.2% और इन्होंने 91.8% फिर से मैं दोहरा दूँ, नाम है कागो पीखू, पिता का नाम है श्री कागो नाकू, स्कूल का नाम है दानी कुनिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जीरो,

0: कांग्रेस 85.8% फर्स्ट रैंक से पास की है।
1: विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए गए जिसके बाद फ्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। धन्यवाद।
2: इस तरह ईटानगर से लेकर पासीघाट, तवांग, तेजू और जीरो तक पूरे अरुणाचल प्रदेश में 80वां स्वतंत्रता दिवस यूनिटी, प्राइड और डेवलपमेंट के संकल्प के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद रखने और देश की यूनिटी तथा इंटेग्रिटी को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि तिरंगे की गरिमा बनाए रखेंगे और देश की प्रोग्रेस में अपना योगदान देंगे। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ज है। अभी आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न समारोह पर आधारित विशेष कॉम्पोजिट रेडियो रिपोर्ट। निर्माण एवं प्रस्तुति गोपाल राय, तकनीकी सहयोग होलीराम ब्रह्मा। अब हमें
3: खबरें आपके लिए, आज 15 अगस्त है यानी आज हमारा राष्ट्र मना रहा है 80वां स्वाधीनता दिवस। तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक। सबसे पहले एक नजर आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। श्रीलंका के साथ दो मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ने शतरंज के सिंकफील्ड कप के 5वें दौर में अमेरिका की वेस्ली सो के साथ बाजी ड्रॉ खेली। भारत आज अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में खेल खिलाड़ियों की संभावनाओं, खेल के लिए सरकार के भविष्य की योजना और ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
4: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल के पोडियम पर भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, तिरंगा लहराता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, खेल संरचनाएं, खेल के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए पोषण के क्षेत्र में भारत महारत हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। भारत के पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम जिन खेलों में क्वालिफाई नहीं कर पाते उन पर ध्यान दें। हम इसके लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाना चाहते हैं। गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा ढूंढने के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रतिभा की पहचान की जाएगी और फिर बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें देश के श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
3: और अब बात हॉकी की। नेदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। मैच के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हैं हमारी सहयोगी करिश्मा राय।
6: 5 दशक के बाद विश्व कप

0: में पदक जीतने के इरादे से उतरी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दो गोल की मदद से अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की। अपना दूसरा ही विश्व कप खेल रही वेल्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले पाँच मिनट में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। दूसरे ही मिनट में वेल्स ने भारतीय सर्कल में प्रवेश किया जब फ्रेड न्यूबोल्ड के पास जैक प्रिचार्ड का शॉट गोलकीपर सूरज करकेरा ने बचा लिया। बाद में भारत ने जवाबी हमला शुरू किया और हार्दिक सिंह ने सातवें मिनट में टीम को पहला पेनल्टी कॉर्नर दिलाया। दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को संजय राणा ने गोल में परिवर्तित भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। भारत को 11वें मिनट में तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर कप्तान हरमनप्रीत ने कोई चूक न करते हुए भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों को कोई सफलता नहीं मिली। हाफ टाइम तक भारत के पास 2 गोल की बढ़त बरकरार थी। मैच के 42वें मिनट में हरमनप्रीत ने बाईं ओर दमदार शॉट पर अपना दूसरा गोल दागते हुए भारत की बढ़त को 3-0 पर पहुंचा दिया। आखिरी मिनट में वेल्स ने अंतर कम करने की भरसक कोशिश की और 56वें मिनट में सेम वेल्स ने अपनी टीम के लिए एकमात्र गोल किया। हरमनप्रीत को बेहतरीन प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मुकाबला 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में ये कहा जा सकता है कि आगाज तो अच्छा है और जब शुरुआत अच्छी हो, धमाकेदार हो, शानदार हो तो उम्मीद तो बेहतर की जा सकती है।
2: जी बिल्कुल अतर, शुरुआत बेहद शानदार रही है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो थे उन्होंने फ्रंट से आज लीड किया और बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है दिखाया है सभी खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने अहम मौकों पर गोल किए। इसके साथ ही अन्य खिलाड़ियों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, चाहे वो संजय राणा हो या गोलकीपर सूरज करकेरा हो, हार्दिक सिंह, जर्मनप्रीत सिंह। टीम एफर्ट के साथ साथ ये जीत हमको देखने को मिली है। भारत को अपना अगला मुकाबला 17 तारीख को इंग्लैंड से और 19 को पाकिस्तान से खेलना है, तो इसी लय को बरकरार रखते हुए जीत की कामना करेंगे।
1: बिल्कुल, जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए हमारी शुभकामनाएं भारतीय हॉकी टीम के साथ हैं। और बात क्रिकेट की, गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पड्डीकल 131 रन और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। इस मैच के बारे में विस्तार से बता रही है हमारी सहयोगी नेहा गोस्वामी।
3: भारतीय क्रिकेट इतिहास के 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 47 रन की साझेदारी की। जायसवाल 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केएल राहुल ने देवदत्त पड्डीकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तीसरे सत्र की शुरुआत में केएल राहुल मांसपेशियों में ऐंठन के कारण खेल जारी नहीं रख सके और 162 गेंदों में 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। कप्तान शुभमन गिल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बारिश के कारण खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। खेल दोबारा शुरू हुआ। देवदत्त पड्डीकल ने ऋषभ पंत के साथ 67 गेंदों में 52 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। पड्डीकल 178 गेंदों में 131 रन बनाकर नाबाद हैं। उनकी पारी में 1 छक्का और 12 चौके शामिल हैं। पड्डीकल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह पहला शतक है, जबकि पंत ने 36 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 27 रन जोड़ लिए हैं। श्रीलंका की तरफ से एकमात्र सफलता प्रभात जयसूर्या ने हासिल की। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: विशेष आज पड्डीकल की अगर बात करें तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। आज की नाबाद पारी में उन्होंने कई नए कीर्तिमान भी बनाए।
2: जी अतर, और आज की देवदत्त पड्डीकल की पारी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आई है और ऐसा करने वाले वे पहले टेस्ट बैटर बन पाए हैं। इसके अलावा इनसे पहले विराट कोहली ने ODI सेंचुरी मारी है 2019 में और विराट कोहली ने गणतंत्र दिवस पर 2012 में शतक जमाया था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट क्रिकेट में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पहला शतक है भारत।
1: एक तरह से सलामी है ये तिरंगे।
2: जी जी बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ वो 2024 के बाद पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 3रे नंबर पर भारत के लिए टेस्ट में शतक लगाया है। 19 टेस्ट मैच में 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद भी भारत को अपना शतकवीर नहीं मिला था। देवदत्त पड्डीकल ने वो करके दिखाया।
1: बिल्कुल,
2: इससे पहले ये रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम था जो उन्होंने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ ये शतक लगाया था।
1: अच्छा, भारत की ओर से

0: ये आज ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल रिटायर्ड हर्ट हुए, अन्यथा शायद भारत का स्कोर और बेहतर होने की संभावना थी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि केएल राहुल जो है बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 162 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली और 9 चौके और 1 छक्का लगाया। उनको एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी के चलते बहुत सारे क्रैम्प से जूझना पड़ रहा था और इसीलिए उन्होंने अपना खेल आगे न जारी रखने का निर्णय लिया।
0: बिल्कुल, आपने चर्चा की विशेष कि देवदत्त पड्डीकल ने आज ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। उन्होंने शतक बनाया आज के इस मैच में, 15 अगस्त के दिन उन्होंने शतक बनाया, शतक वीर कहलाए। लेकिन विशेष इसके अतिरिक्त भी ये मैच एक ऐतिहासिक मैच है, क्योंकि ये भारत का 600वां टेस्ट मैच है और भारत का अब तक का सफर कैसे रहा, ये चर्चा मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं।
1: अतर 1932 में शुरू हुई ये टेस्ट क्रिकेट की जर्नी भारत के लिए अब बहुत ही अच्छे पड़ाव पर पहुंच चुकी है, क्योंकि शुरुआती 100 टेस्ट मुकाबलों में भारत ने सिर्फ 10 में से जीत दर्ज करी थी। लेकिन हम अगर अपने आखिरी के 100 टेस्ट मुकाबलों की बात करें तो उसमें से 56 में से हमने जीत दर्ज करी। कुल मिलाकर बात यह है कि 600 मुकाबलों में 186 मुकाबले जीते हैं, 188 हारे हैं और 224 मुकाबले ड्रॉ खेले।
0: बिल्कुल, उधर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करें तो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 161 रन बनाए। एक रिपोर्ट।
2: ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश द्वारा ली गई 228 रनों के विशाल बढ़त से 67 रन पीछे है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। जैक वेदराल्ड को हसन महमूद ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। इसके बाद ट्रेविस हेड भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 35 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। मार्नस लाबुशेन ने आगाज तो अच्छा किया, लेकिन वे अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 31 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले स्टीव स्मिथ 88 गेंदों का सामना करने के बाद 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिन का खेल खत्म होने तक कैमरून ग्रीन 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और उनका साथ एलेक्स कैरी 19 रन बनाकर दे रहे हैं। पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले हसन महमूद दूसरी इनिंग में अब तक 2 विकेट छटका चुके हैं। इससे पहले बांग्लादेश की पूरी टीम पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 198 रन बनाकर सिमटी थी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष यदि हम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच की चर्चा करें तो बांग्लादेश इस समय एक सुरक्षित स्थिति में कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल अतर, क्योंकि आज तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी भी 67 रन से पीछे है, और अगर कल मुकाबला खेला जाएगा तो 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, जो कि बांग्लादेश आसानी से लेने की कोशिश करेगा। और आखिरी दिन अगर ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा स्कोर भी बनाती है तो बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी उसको चेस करने के लिए। तो ये मुकाबले में बांग्लादेश की स्थिति काफी मजबूत है, वो ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, और इसमें कई सारे कीर्तिमान भी बने। विशेष
1: जी बिल्कुल, अगर हम एक कीर्तिमान की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने एक नॉन विकेट कीपर होते हुए जो रूट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उन्होंने 218 जो कैचेस का रिकॉर्ड था वो अपने नाम कर लिया है, क्योंकि उन्होंने जो रूट से कम टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इसके साथ ही साथ जोश हेजलवुड 9वें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 300 विकेट का आंकड़ा छू लिया है।
0: और अब शतरंज, सेंट लुई में खेली जा रही ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंक फील्ड कप के 5वें दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के वेस्ली सो के साथ बाजी ड्रॉ खेली है। प्रज्ञानंदा ने काले मोहरों से खेलती हुई बाजी ड्रॉ कराई। 10 खिलाड़ियों के बीच खेली जा रही इस प्रतियोगिता में उनके 5 मैच में अब 3 अंक हो गए हैं और वो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। वेस्ली ने 3.5 अंकों के साथ बढ़त बना रखी है। इस बीच अमेरिका के फैबियानो कारुआना और जर्मनी के विंसेंट कीमर ने सफेद मोहरों के साथ सबसे महत्वपूर्ण समय पर जीत हासिल की। कारुआना ने 5वें दौर में आर्मेनियाई मूल के अमेरिकी खिलाड़ी लेवोन ओरोनियन को, जबकि विंसेंट ने खराब फॉर्म में चल रहे अनीश गिरी को हराया। इस तरह से अब प्रज्ञानंदा, कीमर, कारुआना और मैक्सिम वचियर लग्रेव 3-3 अंक लेकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की सानिया वत्स आज पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट बेंडिको ओपन स्क्वाश के महिला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रेचल ग्रीनहम से 5 गेम के रोमांचक मुकाबले में हार गई। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी सानिया को ग्रीनहम से 6-11, 11-8, 9-11, 11-8, 7-11 से हार का सामना करना पड़ा। सानिया ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की 7वीं वरीयता प्राप्त जो टेनर को 11

3 11 1 11 2 से हराया। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर होगी मुलाकात। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अतहर सईद को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
2: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
2: एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों

0: को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका की उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य

0: घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, "A nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve." The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
2: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
2: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
1: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free

वहीं जाते जाते हम आपको कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त सूचना दे दूं। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा अन्य समतन वंगमोर साथियों से बोध भक्ति भजन। कल दोपहर 3:00 आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत बुगुन नगमे। कल दोपहर 3:50 पर सुनेगा फिल्म संगीत क्षमा करें कल दोपहर 3:33 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल दोपहर 4:00 सुनेगा मासिक कार्यक्रम युवावाणी। कल शाम 5:35 पर सुनेगा कार्यक्रम रिक्शुंग लेरिम। कल शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेदन लेरिम में अमल अपसंग वंगमोहर साथियों से बोध भक्ति भजन। कल शाम 7:11 पर सुनेगा कवाली गीतों का कार्यक्रम महफिल कवाली। और कल शाम 7:25 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ। तो श्रोतों, ये तो थे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2:00 मीठे न्यूज के तहत। तब तक के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्री तुप्तन ताशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री